0: के एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है, तीनों की लोकसभा भी एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है, जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे, एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए। परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था, उम्र सजा उनको मिली हुई है।
1: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन एमपी कमल जी सहरावत जी दूड़ी जी योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया, उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए थी।
2: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is ground report by my colleague Vishnu Som from flood-ravaged Nepal.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: FIR under the SCST Act against those responsible calling the ritual an act of untouchability and discrimination. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has denied BJP's involvement and even accused Congress of pushing an unnecessary issue for political purposes.
1: जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर FIR लागू हो. प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं. उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ. उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है. तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SCST एक्ट में FIR दर्ज किया जाए.
2: उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है. वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं. ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है. इसलिए बेवजह के मुद्दों को जो है वो आगे करके, आप लोग स्वयं हल्द्वानी के लोग हैं, आप लोग यहाँ के साक्षी हैं. उत्तराखंड में कौन इस बात को आज स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव होता है.
3: ये जब खड़गे जी ने राज्यसभा में मामला उठाया, हमारे उस समय नेता सदन JP नड्डा जी वहीं बैठे थे. उन्होंने खड़े होकर के कहा, उनका बयान भी तो सुन लो, कि हम इस किसी भी इस तरह की कोई घटना होती है भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है. साफ साफ कहा उन्होंने.
4: चिंता कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाहिर की कि किस तरीके से आज भी दलितों के साथ भेदभाव किए जाते हैं. उन्होंने कई उदाहरण भी देने का काम किया. आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं.
5: ये पहली बार दिया गया बयान नहीं है. चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता. ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए. जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हां वो भी कर सकते हैं. ये वही है जिनके की चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के DNA को लेकर, नाम लेकर यह बात कही थी. मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस. उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी. तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, ये मेरी समझ से बाहर है.
6: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है. वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं. वहां पर गंदगी फैलाई जाती है, उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को कि खिल्ली उड़ा रहे हैं. खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड बना दिया है, ये खड़गे जी इस हिसाब से समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था.
0: Our Arisa TK Srimora is coming in at this hour. Now, Sameer Raina is facing fresh backlash over his Bihari Kashmiri remarks. Congress has condemned the comments. Kashmiri Hindus have called them insensitive, while the BJP is demanding a ban on India's Got Latent. Raina, remember, Sameer Raina mocked Sharon's Bihari background, saying that she came to Mumbai for a job. Sharon Verma then hit back, taking a dig at Raina's, in fact, Kashmiri roots, saying that she left Bihar by choice. Samir Raina and fellow comedian Shan Verma's remarks have now triggered a sharp political and community backlash. Kashmiri Pandit groups and leaders from across the political spectrum have now condemned the comments, with parties calling for a greater responsibility in comedy. Samir Raina's controversy file now runs from an abortion joke to India's got latent row, disability remarks and even a Supreme Court case. Now his Bihari Kashmiri jibes have triggered fresh political and community backlash.
7: She's from Bihar and she's so Bihari, she thinks Ebola means someone said something.
8: Samir is so Kashmiri, he loves getting stoned.
7: This is why you are the judge now, yaar. Kya baat hai? You know, Sharon Verma is a Bihari who came to Mumbai in search of a job. Just Bihari things.
8: At least I left my state by my choice.
7: Kya baat hai, yaar. What a... Hilarious.
9: Bharat ka collective parvah hai. भारत का कलेक्टिव सेंटिमेंट है, भारत का इतिहास है, भारत की परंपरा और भारत का अग्रिम स्वर्णिम भारत का फ्यूचर है। ऐसी शरारतपूर्ण हरकतें, ऐसी हरारतें, इससे पहले भी समय रहना फाइन उन पे पड़ा था ऐसी तमाशे करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है सस्ती टीआरपी के लिए वो जो एक लक्ष्मण रेखा कानून द्वारा, संविधान द्वारा, जो गाइडलाइंस के द्वारा या बेसिक जो एक सामाजिक एक जो सोशल मोरालिटी है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अपार्ट, इन सबको तार तार करके जो कमेंट्स किए, इसको कंडेम करके इसकी भर्सना करते हैं, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
10: देखिए, मुझे लगता है कि जो भी कॉमेडियन हैं वो कोई भी बात अगर बोलते हैं तो ज़्यादा उनका उद्देश्य लोगों को हंसाने का रहता है। अब उस क्रम में कई बार उनसे गलती हो जाती है, इस तरह से टिप्पणी कर देते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर आप कोई मुद्दा बना के उनको टारगेट करेंगे वो ठीक नहीं है, बजाय इसके कि उनके साथ संवाद करना चाहिए और समझाना चाहिए।
11: देखिए, इस तरह के जो भी लोग करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि आखिर ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल क्यों होते हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं, और कोई बिहार में पैदा हुआ, कोई कश्मीर में पैदा हुआ, कोई दिल्ली में पैदा हुआ, अलग अलग स्थानों पर लोग पैदा हुए हैं, तो इसलिए उनके उनकी नागरिकता पर कोई कमी है ऐसी बात नहीं है। और बोलते समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस न लगे।
12: ये जो उसका मतलब वो बचकाना हरकत है, वो जो जॉब ढूंढने गई तो अपना जॉब करना है यार, तेरे को मेरे जख्मों पे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? तो होते कौन है? क्या तेरे को यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पता है? क्या तेरे को पता है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तेरे को पता है कि कश्मीर है क्या? तेरे को पता है 1947 में हुआ क्या? नोबडी नोज।
0: विद दैट वी स्लिपिंग इनटू वेरी शॉर्ट ब्रेक, मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑन द अदर साइड, स्टे ऑन विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।
13: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
14: India's rupee-powered Conto card. India's college ID has got superpowers now.
15: We are empowering the university Gen Z students.
16: हमारे मांगे पूरी करो।
17: साथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले।
18: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
19: Capturing. एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
20: क्या बात है?
21: You are literally changing lives.
22: It can be a revolution.
13: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of
16: telling the stories that couldn't be ignored, of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose.

0: वो तो वहाँ पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहाँ पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इसलिए बेवजह के मुद्दों को जो है वो आगे करके, आप लोग स्वयं हल्द्वानी के लोग हैं, आप लोग यहाँ के साक्षी हैं, उत्तराखंड में कौन इस बात को आज स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव होता है।
1: ये जब खड़गे जी ने राज्यसभा में मामला उठाया, हमारे उस समय नेता सदन जेपी नड्डा जी वहीं बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा, उनका बयान भी तो सुन लो कि हम इस किसी भी इस तरह की कोई घटना होती है भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, साफ साफ कहा उन्होंने।
2: चिंता कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाहिर की कि किस तरीके से आज भी दलितों के साथ भेदभाव किए जाते हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी देने का काम किया। आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं।
3: ये पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हां वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके की चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर, नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है ये मेरी समझ से बाहर है।
4: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लगने राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को कि खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड बना दिया है, ये खड़गे जी इस बात को समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ वो होना नहीं चाहिए।
5: और ऐसा ठीक इज टू मोरा ब्रीज कमिंग इन आदर सावन और समीर रैना इज फेसिंग फ्रेश बैकलैश ओवर इज बिहारी कश्मीरी रिमार्क्स। कांग्रेस हैज कंडेम्ड द कमेंट्स, कश्मीरी हिंदूज हैव कॉल्ड देम इनसेंसिटिव, व्हाइल द बीजेपी इज डिमांडिंग अ बैन ऑन इंडियाज गॉट लेटेंट। रेनी रिमेंबर समीर रैना मॉक्ड शैरन्स बिहारी बैकग्राउंड सेइंग दैट शी केम टू मुंबई फॉर अ जॉब। Sharon Verma then hit back, taking a dig at Raina's, in fact, Kashmiri roots, saying that she left Bihar by choice. Samir Raina and fellow comedian Sharon Verma's remarks have now triggered a sharp political and community backlash. Kashmiri Pandit groups and leaders from across the political spectrum have now condemned the comments, with parties calling for a greater responsibility in comedy. Samir Raina's controversy file now runs from an abortion joke to India's Got Latent row, disability remarks and even a Supreme Court case. Now his Bihari Kashmiri jibes have triggered fresh political and community backlash.
6: She's from Bihar and she's so Bihari, she thinks Ebola means someone said something.
7: Samay is so Kashmiri, he loves getting stoned.
6: This is why you are the judge now, yaar. Kya baat hai? You know, Sharon Verma is a Bihari who came to Mumbai in search of a job. Just Bihari things.
7: At least I left my state by my choice.
6: Kya baat hai yaar? What a hilarious.
8: Bharat ka collective pravah hai. Bharat ka collective sentiment hai. भारत का इतिहास है, भारत की परंपरा और भारत का अग्रिम स्वर्णिम, भारत का फ्यूचर है। ऐसी

0: हरारत पुनः हरकतें ऐसी हरारतें, इससे पहले भी समय रहना फाइन उन पर पड़ा था ऐसी तमाशे करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है सस्ती टीआरपी के लिए वो जो एक लक्ष्मण रेखा कानून द्वारा, संविधान द्वारा, जो गाइडलाइंस के द्वारा या बेसिक जो एक सामाजिक एक जो सोशल मोरलिटी है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अपार्ट, इन सबको तार तार करके जो कमेंट्स किए इसको कंडेम करके इसकी भर्त्सना करते हैं, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो भी कॉमेडियन हैं वो कोई भी बात अगर बोलते हैं तो ज़्यादा उनका उद्देश्य लोगों को हंसाने का रहता है। अब उस क्रम में कई बार उनसे गलती हो जाती है, इस तरह से टिप्पणी कर देते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर आप कोई मुद्दा बना के उनको टारगेट करेंगे वो ठीक नहीं है, बजाय इसके कि उनके साथ संवाद करना चाहिए और समझाना चाहिए।
2: देखिए, इस तरह के जो भी लोग करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि आखिर ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल क्यों होते हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं, और कोई बिहार में पैदा हुआ, कोई कश्मीर में पैदा हुआ, कोई दिल्ली में पैदा हुआ, अलग अलग स्थानों पर लोग पैदा हुए हैं, तो इसलिए उनके उनकी नागरिकता पर कोई कमी है ऐसी बात नहीं है। और बोलते समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस न लगे।
3: ये जो उसका मतलब वो बचकाना हरकत है, वो जो जॉब ढूंढने गई तो अपना जॉब करना है यार, तेरे को मेरे जख्मों पे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? तो होते कौन है? क्या तेरे को यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पता है? क्या तेरे को पता है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तेरे को पता है कि कश्मीर है क्या? तेरे को पता है 1947 में हुआ क्या? Nobody knows.
4: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.
5: India's rupee-powered Konto card. India's college ID has got superpowers now.
6: We are empowering the university Gen Z students.
7: हमारे मांगे पूरी करो.
8: सारथी visually impaired person को चलने फिरने में मदद करता है अकेले.
9: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
10: कैप्चरिंग एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
11: क्या बात
12: है? You are literally changing lives.
13: It can be a revolution.
14: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
3: India's rupee powered Conto card.
4: India's college ID has got superpowers now.
5: We are empowering the university Gen Z students.
6: हमारे मांगे पूरी करो.
7: साथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले.
8: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो.
9: कैप्चरिंग. एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है.
10: क्या बात है.
11: You are literally changing lives.
12: It can be a revolution.
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored.

0: Samay is so Kashmiri, he loves getting stoned.
1: This is why you are the judge now, yaar. Kya baat hai? You know, Sharon Verma is a Bihari who came to Mumbai in search of a job. Just Bihari things.
0: At least I left my state by my choice.
1: क्या बात है यार, what a hilarious.
2: कोई भी हो, उन लोगों को जनता की भावना का ध्यान रखना चाहिए. किसी भी क्षेत्र की जनता की भावनाओं के प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. क्या तो ऐसा गलत क्या?
3: भारत का कलेक्टिव प्रवाह है, भारत का कलेक्टिव सेंटिमेंट है, भारत का इतिहास है, भारत की परंपरा और भारत का अग्रिम स्वर्णिम भारत का फ्यूचर है. ऐसी शरारत पुनः हरकतें, ऐसी हरारतें, इससे पहले भी समय रहना फाइन उन पे पड़ा था ऐसी तमाशे करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है सस्ती टीआरपी के लिए वो जो एक लक्ष्मण रेखा कानून द्वारा, संविधान द्वारा, जो गाइडलाइंस के द्वारा या बेसिक जो एक सामाजिक एक जो सोशल मोरलिटी है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अपार्ट, इन सबको तार तार करके जो कमेंट्स किए, इसको कंडेम करके इसकी भर्त्सना करते हैं, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए.
4: देखिए, इस तरह के जो भी लोग करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि आखिर ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल क्यों होते हैं. हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं, और कोई बिहार में पैदा हुआ, कोई कश्मीर में पैदा हुआ, कोई दिल्ली में पैदा हुआ, अलग अलग स्थानों पर लोग पैदा हुए हैं, तो इसलिए उनके उनकी नागरिकता पर कोई कमी है ऐसी बात नहीं है. और बोलते समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस न लगे.
5: ये जो उसका मतलब वो बचकाना हरकत है, वो जो जॉब ढूंढने गई तो अपना जॉब करना है यार, तेरे को मेरे जख्मों पे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? तो होते कौन है? क्या तेरे को यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पता है? क्या तेरे को पता है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तेरे को पता है कि कश्मीर है क्या? तेरे को पता है 1947 में हुआ क्या? नोबडी नोज.
6: Well, Jackie, some more updates for you at this hour. Novartis' chief Mohan Bhagwat addressed around 5,000 members of the Indian American organizations at the Infosys Theater inside the Madison Square Garden of New York City. Now, the event titled Universal Oneness Celebration was organized by a group called the American Hindus for Engagement and Dialogue. Now, during his address, Bhagwat asserted, and I quote, that diversity has to be celebrated, it has to be respected, and it has to be accepted. At the same time, we must keep in mind this feeling of oneness. This is exactly what Mohan Bhagwat had to say. Let's also listen in to more reactions from him.
7: When we say Bharat, another phrase is discussed, unity in diversity. For Bharat, this unity and this diversity, both are in their DNA. You see, nations are not merely geographical entities. In the design of this universe, nations have to carry out a duty. Swami Vivekananda said, every nation has a message to deliver. Every nation has a mission to accomplish. Every nation has a destiny to fulfill. What is the destiny given to Bharat? Bharat is there to realize and from time to time make the world realize this unity in diversity. We are one, and due to diversity that oneness is decorated. The diaspora, Bharatiya diaspora, they have a duty to their karma bhumi. They must fulfill that. They should be loyal to their karma bhumi. Because Bharat is their Janmabhumi, if they have urge to do something and they can do that.

0: Now is security has been downgraded from plus to Z category. Usually earlier under Z plus category, he had 15 to 56 police personnel as a part of security. Now it has been downsized to 34 police personnel. So and also he has a PSO personal security officers also as additionally he will be continuing. But on the other hand, there has been a politically also other parties such as SDPA and other parties have criticized this, calling this as expressed concern over this week. But DMK had to officially formally react to this. But TDK government sources claim it's protocol. Recently there was a meeting headed by Tamil Nadu DGP and also Chief Secretary and other senior police official in which there were a discussion regarding the threat assessment. So based on this, as a protocol only, the decision has been taken. No political motive behind this week.
1: Absolutely, Vijay Gopal. I understand that there isn't any political motive behind this, and this is what, of course, the Tamil Nadu government also maintains. But help us understand, has there been any reaction that's come about from the former Chief Minister M.K. Stalin or perhaps his team?
0: So far, officially, spokesperson or M.K. Stalin himself have not reacted to this, but on social media, DMK supporters, various handles, social handles of DMK followers or supporters have reacted over this, calling this as a vendetta politics by TVK government. On the other hand, allies, DMK allies like SDPA and Manithanaiyam Makkal Katchi have expressed their, those leaders, Tamimoon Ansari MLA, has reacted over this, and on X platform, he had urged the Chief Minister to reconsider the decision, and also he pointed out that on daily basis, many supporters of many people, many supporters are meeting M.K. Stalin on daily. It would be necessary and appropriate to have a Z plus category for protection for M.K. Stalin. So this is the argument put forward by DMK allies, but we have to wait how TVK government going to respond officially and DMK reaction also.
1: Right, absolutely. Of course, Vijay Gopal, we are awaiting those important reactions coming in, especially from M.K. Stalin's team after the security cover of his has in fact has been reduced. Thank you so much, Vijay Gopal, for joining us and sharing those crucial updates with us. Well, tracking some fresh updates for you. Well, Congress President Mallikarjun Kharge addressed a rally at Hadwani Ramlila Maidan on August 8th. Now, this set the stage for the controversy that subsequently followed. A Shuddhikaran, also known as a purification ceremony, was now conducted at the same venue 2 days later on the 10th of August. This after Kharge's rally has triggered a huge political controversy. Rahul Gandhi has now demanded an FIR be registered under the SC/ST Act, ST Act of against those, of course, responsible, calling the ritual an act of untouchability and even discrimination. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, however, denied BJP involvement in the act and even accused the Congress party of pushing an unnecessary issue for political purposes.
2: जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।
3: उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहाँ पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इसलिए बेवजह के मुद्दों को जो है वो आगे करके, आप लोग स्वयं हल्द्वानी के लोग हैं, आप लोग यहाँ के साक्षी हैं, उत्तराखंड में कौन इस बात को आज स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव होता है।
4: ये जब खड़गे जी ने राज्यसभा में मामला उठाया, हमारे उस समय नेता सदन जेपी नड्डा जी वहीं बैठे थे। उन्होंने खड़े होकर के कहा, उनका बयान भी तो सुन लो कि हम इस किसी भी इस तरह की कोई घटना होती है भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, साफ साफ कहा उन्होंने।
5: चिंता कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाहिर की कि किस तरीके से आज भी दलितों के साथ भेदभाव किए जाते हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी देने का काम किया। आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं।
6: ये पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हां वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके की चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर, नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस। उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है ये मेरी समझ से बाहर है।
7: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड बना दिया है, ये खड़गे जी हिसाब से समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ वो होना नहीं चाहिए।
8: मल्लिकार्जुन खड़गे ये दलित नेता है, ये पूरा देश जानता है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष ठीक है, लेकिन किसी भी दलित के साथ ये व्यवहार होना, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान है। एक जगह पे खड़गे जी जाते हैं और बाद में वहाँ पे कुछ मनुवादी लोग जाके उसका वहाँ पे कुछ यज्ञ और कुछ अलग अलग शुद्धिकरण करते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस देश की छूत अछूत ये अभी तक बंद नहीं हुआ और इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार पे जाती है।
9: राहुल गांधी जी ने पहले बोला कि भाई ये हुआ है, 20 दिन बाद उनको स्मरण आया, तब उन्होंने FIR करवाया नहीं और आज ये ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का जो चेहरा है वो दलित विरोधी चेहरा है, नव सामंती चेहरा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा। आज वो खड़गे जी के सम्मान की बात कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने जा रही थी। चुनाव लड़ने के पूर्व में नामांकन की प्रक्रिया होती है। नामांकन की प्रक्रिया में पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग जाते हैं। अंदर कौन कौन गया? प्रियंका गई, सोनिया गांधी गई, इनके पतिदेव गए, इनके बच्चे गए। बाहर कौन खड़ा रहा? देखिए, दरवाजे के बाहर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी बाहर से झांक रहे हैं। तो क्या दलितों का स्थान अंदर नहीं है, दलितों का स्थान बाहर है? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से आज।
1: Recent breaking news coming in from West Bengal. Let's take you through it. TMC Member of Parliament Abhishek Banerjee has been served a notice by the Kolkata police. That's right, Abhishek Banerjee has been asked to appear for questioning. The TMC Member of Parliament has now been booked for allegedly assaulting cops at his office. The Kolkata police has lodged as many as 3 FIRs in the case, and the police has served a notice to the TMC Member of Parliament Abhishek Banerjee to appear for questioning on Tuesday. Now that's an important update that we're tracking from West Bengal coming in. My colleague Hrithik is with us on the broadcast to bring us the updates. Hrithik, that's quite an important development that's now coming in, especially on the political front, where TMC Member Parliament Abhishek Banerjee, I believe, has been served a notice by the Kolkata police.
10: Well, that's right. What we're given to understand that Abhishek Banerjee, the Kolkata police served a notice, summoning notice to TMC MP and National General Secretary Abhishek Banerjee in connection to the FIR has been lodged with regard to the removal of the billboard from his Kamakshi top office and the drama unfolded on

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: India's rupee powered Conto card. India's college ID has got superpowers now.
9: We are empowering the university Gen Z students.
10: हमारे मांगे पूरी करो।
11: सारथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले।
12: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
13: कैप्चरिंग। एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
14: You are literally changing lives.
15: It can be a revolution.
16: Across the country.
17: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Well, Prime Minister Modi is on a two-day visit to Uzbekistan. Several defining visuals have come of the Prime Minister. But before that, we actually have Prime Minister's Mann Ki Baat coming up. Let's take you through it.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
2: नमस्ते सर, नमस्ते।
1: भाई मुझे पता चला है, न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
2: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
2: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
2: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार

0: उसके जो लीडर्स थे वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री। सर
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं। सर, सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टैब लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं

जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे

बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला, उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए।
पहले

यही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल
वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया, उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है, इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है, यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए
नई प्रेरणा।

0: विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: Rupee powered Konto card. India's college ID has got superpowers now.
4: We are empowering the university Gen Z students.
3: हमारे मांगे पूरी करो।
5: सारथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले।
6: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
7: कैप्चरिंग। एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
8: क्या बात है?
9: You are literally changing lives.
10: It can be a revolution.
11: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: देखिए, नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब। व्हाट टाइम इज द मेडल सेरेमनी?
8: द मेडल सेरेमनी बिगिंस एट 6:30 PM।
9: लाइव जेन AI इन द किया सोरेंटो, थॉटफुल इंटेलिजेंस फॉर द मोमेंट्स दैट मैटर।
10: किया, मूवमेंट दैट इंस्पायर्स।
5: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
11: India's rupee-powered Conto card. India's college ID has got superpowers now.
12: We are empowering the university Gen Z students.
11: हमारे मांगे पूरी करो।
13: साथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले।
14: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
15: कैप्चरिंग एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
16: यू आर लिटरली चेंजिंग लाइव्स।
17: इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
5: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, our pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
8: India's rupee powered Conto card. India's college ID has got superpowers now.
9: We are empowering the university Gen Z students.
10: हमारे मांगे पूरी करो.
11: सारथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले.
12: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो.
13: कैप्चरिंग एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है.
14: You are literally changing lives.
15: It can be a revolution.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
5: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: India's rupee powered Conto card. India's college ID has got superpowers now.
9: We are empowering the university Gen Z students.
10: हमारे मांगे पूरी करो।
11: साथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले।
12: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
13: कैप्चरिंग। एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
14: क्या बात है।
15: You are literally changing lives.
16: It can be a revolution.

0: changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For three decades, NDTV has been there. For the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: India's rupee powered Conto card. India's college ID has got superpowers now.
3: We are empowering the university Gen Z students.
4: हमारे मांगे पूरी करो.
5: साथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले.
6: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो.
7: कैप्चरिंग एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है.
8: You are literally changing lives.
9: It can be a revolution.

0: ये कहानी है एक लड़के की, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस लड़के की, जिसके पास था तो बस माता पिता का आशीर्वाद, जो 16 साल की उम्र में ही अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचा नौकरी की तलाश में। इसने हर ठोकर को आने वाली जीत की सीढ़ी में बदल दिया। एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया और अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने वाले इस शख्सियत का नाम है गौतम अदाणी। गौतम अदाणी जी का हमेशा से विश्वास रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग हैं।
1: I've always believed that if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
0: गौतम अदाणी के इस एक काबिल सपने को देश ने अवसर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिली। अब वे अपने जैसे अनेक काबिल सपनों को ग्रास रूट से उठाकर देश के निर्माता बनाना चाहते हैं। मजबूरियों और हालातों की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशना चाहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 24 जून को शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट, वंदे भारतम।

अपने विजन और मिशन की गंभीरता का प्रमाण देते हुए गौतम अदानी ने टाइम कैप्सूल में अपने कमिटमेंट की चिट्ठी रखी। कमिटमेंट है वंदे भारतम का, देश के ग्रास रूट के सपनों को करोड़ों की सहायता देने का और इस राष्ट्रीय धरोहर को पूरे वर्ष लगातार जारी रखने का। इसी लक्ष्य के साथ पोर्टल बना, कैटेगरीज बनी, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। 12 भाषाओं में चलाया गया ये कैंपेन गांव गांव तक पहुंचा। वंदे भारतम वैन ने कॉलेजों और स्कूलों से लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को वंदे भारतम के मिशन से परिचित कराया। नेक इरादों को देश भर की लीडरशिप का भी समर्थन मिला। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, कैबिनेट मिनिस्टर्स और वरिष्ठ अधिकारियों ने वंदे भारतम को सराहा। सोशल मीडिया पर वंदे भारतम के इंस्पायरिंग वीडियोस को 41 करोड़ से अधिक बार देखा गया और 82 करोड़ से अधिक इंप्रेशंस आए। तभी तो एक महीने में ही 26,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आईं, वो भी इन विभिन्न कैटेगरीज में जो आज के भारत की हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। 4,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स ने वीडियो पिचेस भेजी। एआई और मैनुअल इवैल्यूएशन के माध्यम से 26,000 में से 1,000 एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट हुई। इन 1,000 एप्लीकेशंस का हमारे मेंटर्स के बीच 10-10 मिनट के डिस्कशंस हुए, जिसके बाद 200 इनोवेटर्स चुने गए। IIT, IIM के प्रोफेसर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की 30-30 मिनट की कॉल्स के बाद सिलेक्टेड फाइनलिस्ट्स अहमदाबाद पहुंचे। 9 अगस्त को अहमदाबाद के शांतिग्राम में एक शानदार बूट कैंप आयोजित

0: ये रिस्पॉन्स सिर्फ एक टीवी शो की टीआरपी नहीं था, टीआरपी का हमारे लिए मतलब है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड प्राइड। 10 से 13 अगस्त के बीच वंदे भारतम का स्टेज इनोवेशन के स्टार्स से जगमगा उठा।
1: हम कंस्ट्रक्शन को फास्ट, बेटर और मोर सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं।
2: कर लो आसमान मुट्ठी में।
0: नए भारत की उद्यमिता के पहचान बने 20 दिग्गज मेंटर्स देने वाले हैं इस नई राष्ट्रीय धरोहर को आकार।
3: वो दिन यही है वंदे भारतम, वो दिन यही है वंदे भारतम।
0: इसी मंच से टॉप विनर्स को मिलेगी करोड़ों की प्राइज मनी और इसी मंच से होंगी करोड़ों की डील्स। साथ ही हमारी स्पेशल कैटेगरीज वुमेन, रूरल, दिव्यांग, सस्टेनेबल को दी जाएगी स्पेशल प्राइज मनी भी। आइए आत्मविश्वास के इस मंच से सपनों का टेक ऑफ करते हैं।
3: यही है वंदे भारतम,
0: वंदे भारतम,
3: यही है वंदे भारतम।
0: अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार इस बार, तो निराश ना होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, जुड़ो और पाओ योग्य निवेश, मेंटर या अडानी ग्रुप का सहयोग। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती हैं। और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है, तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइस। सभी पिचेस के अनप्लग्ड वर्जन अब वंदे भारतम और NDTV के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आइए एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं हमारे एम्बेसडर और होस्ट राजीव खंडेलवाल के साथ, जो आज करेंगे इस 10 एपिसोड्स की शानदार सीरीज की शुभ शुरुआत।
4: आइडिया छोटा हो सकता है, पर सोच और जज्बा बड़ा होना चाहिए। और इसी इंस्पायरिंग सोच को सपोर्ट करने के लिए मैं आपका दोस्त राजीव खंडेलवाल लेकर आया हूँ वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय मिस्टर गौतम अदानी। एक ऐसा मंच जहाँ भारत के हर छोटे शहर, गांव, किचन और क्लासरूम से आने वाले बड़े सपनों को पहचान और उड़ान मिलेगी। एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ हमारे इनोवेटर्स तैयार हैं इस मंच पर अपने आइडियाज देश और मेंटोर्स के सामने रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं इस शो का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। एक एक करके हमारे इनोवेटर्स आएंगे और अपना विजन और आस्क मेंटोर्स के सामने रखेंगे। अगर मेंटोर्स को इनोवेटर्स के बिजनेस या उनके आइडियाज में पोटेंशियल नजर आता है, तो वो हमारे इनोवेटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुभारंभ के इस लिफाफे के साथ यहीं से होगी एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत। अगर किसी इनोवेटर की पिच स्टोरी या उनका स्ट्रगल मेंटोर्स के दिल को छू जाता है, तो वो उन्हें दे सकते हैं हमारे वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी 10 डेज मेंटोरशिप विद अदानी ग्रुप। हर पिच के बाद हमारे मेंटोर्स इनोवेटर्स को अपना स्कोर देंगे और वो जाएंगे हमारे वंदे भारतम वॉल्ट में। महामंच यानी फिनाले एपिसोड में इन स्कोर्स के द्वारा हमें मिलेंगे हमारे टॉप 5 इनोवेटर्स, जिन्हें मिलेगा एक ग्रैंड कैश प्राइज।
3: वंदे भारतम, भारतम, वंदे भारतम।
4: आज वंदे भारतम के मंच पर इनोवेटर्स के साथ आएंगे मार्केट के वो दिग्गज जिनको गौतम अदानी जी ने खुद चुना है। आज अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आए हैं हमारे इनोवेटर्स को एनकरेज करने के लिए। चलिए मैं आपको हमारे आज के मेंटोर से मिलवा देता हूँ। ये ज्योतिष शास्त्र को मानते नहीं थे, पर आज टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा संगम चला रहे हैं। प्लीज वेलकम द मैन हु रीरोट हिज ओन डेस्टिनी, फाउंडर एंड CEO ऑफ एस्ट्रोटॉक, मिस्टर पुनीत गुप्ता। हाय पुनीत, good to have you here.
5: Please, have a seat. Here.
4: जिन हाथों ने कभी बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स, ओला और बुक माई शो जैसे जायंट कंपनीज के फाइनेंस को संभाला, आज वही हाथ सैकड़ों फाउंडर्स के सपनों को दिशा दे रहे हैं। 23,000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क बनाने वाले हमारे अगले मेंटोर, उनका स्वागत कीजिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को फाउंडर मिस्टर नितेश शाह। नितेश भाई, स्वागत है आपका।
5: थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू फॉर कमिंग।
5: प्रिविलेज टू बी हियर।
4: प्लीज। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इन्होंने उस शॉपिंग को कमाई में बदल दिया। करोड़ों भारतीयों को स्मार्ट शॉपिंग का नया तरीका सिखाया, हजारों लोगों को अर्न करो के जरिए रोजगार का नया रास्ता दिखाने वाली कैश करो और अर्न करो की को फाउंडर, प्लीज वेलकम स्वाति भार्गवा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो।
2: थैंक यू,
4: प्लीज हैव अ सीट। आ रहे हैं हमारे स्पेशल मेंटोर। एक वक्त था जब लोग सिर्फ बड़े फॉरेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदते थे, फिर एक एंटरप्रेन्योर आया जिसने कहा हम भी बना देंगे, और आज 12,000 करोड़ से ज्यादा की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बना ली। प्लीज वेलकम इंडिया के नंबर वन ऑडियो ब्रांड और दुनिया के वन ऑफ द टॉप 5 वेयरेबल ब्रांड बोट के को फाउंडर मिस्टर अमन गुप्ता। Hi Aman, thank you so much for coming. Please have a seat. नाम विरासत दे सकता है, लेकिन नई सोच, नई एनर्जी और नए नजरिए के साथ उसे आसमान तक ले जाना, ये इन्होंने कर दिखाया। एयरपोर्ट्स को सिर्फ लैंडिंग एरिया नहीं, प्रोग्रेस का रनवे माना। ये हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदलने का जज्बा रखते हैं। गूगल के साथ $15 बिलियन की AI पार्टनरशिप क्रैक करने वाले, एयरपोर्ट्स और AI ड्रिवन भारत के विजन की कमान संभालने वाले, प्लीज वेलकम द यंगेस्ट सेकंड जनरेशन चेंज मेकर ऑफ अदानी फैमिली, मिस्टर जीत अदानी। हाय जीत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग हियर।
6: एब्सोल्युटली,
4: प्लीज हैव अ सीट। So good to have all 5 of you here. Thank you so much for coming. Jeet, आपके फादर जो हैं, उनका ये सपना था कि एक ऐसा मंच तैयार हो वंदे भारतम, जहाँ पर प्रोत्साहन मिले उन स्टार्टअप्स को जिन्हें मौका नहीं मिलता। ये मंच उनको यहाँ पर इनवाइट कर रहा है जो कि छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में जहाँ पर बसे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको ये देख कर कि आपके फादर का वो सपना और अब धीरे धीरे फाइनली रंग ला रहा है?
6: इट्स डेफिनेटली वेरी हार्टनिंग टू सी। वो ऑलवेज एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड रहे, तो उन्होंने जो सोचा है वो ऑलवेज हो गया है। तो फर्स्ट टाइम यू नो आई एम सीइंग दैट फ्रॉम अ यू नो सॉफ्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो उनका एक सपना था कि पूरे देश के कोने कोने से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को कैसे एक स्टेज पे ला सके और उनको कैसे सपोर्ट कर सके, I'm seeing that live now and you know I'm very excited for what's going to come today.
4: So one personal question hai ki itne busy honge Gautam sir, to kya unhe waqt milega yahan pe is show ke bare mein updates lene ka ki kya chal raha hai, kaun kaun aa raha hai, kya hoga?
6: Aapko lagta hai wo busy hai, lekin he is always updated to the minute about every single, so he is definitely going to be updated what's going on here.
4: You think that somewhere he may just be watching this?
6: वो पूरा शो भी आज फॉलो करने वाला है।
4: क्या बात है, तो लेट्स सी दैट। जितने भी यहाँ पे इनोवेटर्स आने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं खुद गौतम अदानी जी आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहे हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू द इनोवेटर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। लेट्स बिगिन द शो। जैसा कि आप सब ने अपनी जिंदगी में किसी एक स्टेज पर किया होगा, जब आप अपनी पहली पिच लेकर गए होंगे, तो वो जो फीलिंग्स आप लोगों के उस समय दिल में होगी, आपके जहन में होगी, एग्जैक्टली वैसी फीलिंग्स ना हमारे इनोवेटर्स की बाहर है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली उनका हाल क्या है। तन्वी, ओवर टू यू।
7: एक सेकंड, मैं आ गई, आ गई। मैं सुंदर तो दिख रही हूँ ना? नहीं, मैं टीवी पे आने वाली हूँ, फाउंडर्स इनोवेटर्स, अच्छी दिख रही हूँ ना? सबकी यहाँ पे आंखें मेडिटेशन में जा रही है, इतनी घबराहट हो रही है, मतलब अहमदाबाद के तापमान से बड़ा तापमान यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर है तन्वी आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके वॉर्म के लिए, आपको बढ़ावा देने के लिए। सो हम रेडी है ऑन द काउंट ऑफ थ्री, वंदे वंदे वंदे, ऑल द बेस्ट इनोवेटर्स, rock the stage, the day is yours.
4: So mentors, अब जो हमारे innovators हमारे सामने आने वाले हैं, वो one of the youngest innovators, वो इतने young हैं कि उनके जो दोस्त हैं, वो उन्हें कहते हैं कि chill bro, पर वो कहते हैं कि chill ho. Please welcome the founders of chill ho.
6: मैं ध्रुव प्रताप सिंह चौहान, जयपुर राजस्थान से, और मैं अभी थर्ड ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में।
2: और मैं अथर्व योगेश जामरे, धुए महाराष्ट्र से, और मैं अभी इसके साथ सेम क्लास में पढ़ता हूँ।
4: सो बेसिकली हमेशा आप लोग चाहते थे कि हम लोग कुछ ऐसा सोचें जो बाकी लोगों ने नहीं किया, या ये जरूरत से पैदा हुआ?
2: हमारा एक कॉलेज का भी प्रोजेक्ट था जिसमें हमको एक परफ्यूम ब्रांड बेचना था एज अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट, उसी से हमारी शुरुआत हुई एंटरप्रेन्योरशिप की। सो वी सोल्ड आउट विद इन 3 आवर्स। इसलिए हमको तो पता चला कि there's something we can do in this, and तब से हमारा चल रहा था कि कुछ ना कुछ इस सेक्टर में करना है।
4: आप लोगों को देख के लगता है एक्चुअली हमारे देश का जो भविष्य है वो वाकई बहुत उज्जवल है, बिकॉज़ यंगस्टर्स लाइक यू हैव द पोटेंशियल टू एक्चुअली चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। आप लोग अपनी पिच के साथ तैयार हैं?
6: या
2: करेक्ट।
4: 3 मिनट आपके पास में, और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
2: भाई बहुत गर्मी हो रही है यार।
6: हाँ यार, बहुत ज्यादा ही गर्मी है यार।
2: इस गर्मी का कोई सोल्यूशन है क्या?
6: यार क्या ही सोल्यूशन है यार, एसी में बैठ जाएंगे, ठंडा पानी पी लेंगे या कूलर चला लेंगे।
2: सही कहा। तो जजेस, ये है इंडिया के टॉप 3 मोस्ट यूज कूलिंग सोल्यूशंस। लेकिन इनकी एक ही दिक्कत है कि ये कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इंडियंस की एक खास बात बताऊं तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ लगा लेते हैं, जैसे कि पानी की बॉटल से ड्रिप इरिगेशन बना लिया, या फिर कोई साड़ी से शॉल बना लिया। और इसी गर्मी को टैकल करने के लिए इंडियंस ने निकाला एक गीला गमछा, उसे वो अपने गले पे लगाते हैं और ठंडा हो जाते हैं। लेकिन जो डिलीवरी ड्राइवर्स, फार्मर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो इस सॉल्यूशन को यूज करते हैं, उन्हें 2 मेन दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, जो कि ऐसे 20 से 30 मिनट की कूलिंग और उनकी पूरी शर्ट गीली हो जाती है।
6: लेकिन अथर्व, यही एक प्रॉब्लम नहीं है। जजेस, आपके और मेरे पास तो एसी का प्रिविलेज है, लेकिन आप उन 38 करोड़ भारतीयों के बारे में सोचिए जो हर रोज 8 से 12 घंटे इस कड़ी धूप में निकलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पेट पाल सके और इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। और इसकी कीमत सिर्फ उनके पसीने में नहीं चुकती है, 12 से 4 के बीच में वो लोग काम ही नहीं करते। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, ये उनकी मजबूरी है गर्मी की वजह से, और इसका सीधा असर उनकी जेब पे पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की 2030 तक 4.5% GDP, जो कि है 150 से 250 बिलियन डॉलर्स, विलुप्त हो जाएगी। ये इंडिया की प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा लीक है जो आज तक छुपा हुआ था। हमारे दिमाग में यही आइडिया आया कि हम इस गीले गमछे के जुगाड़ को रिप्लेस करने के बजाय क्या हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं।
2: और इसी आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए हमने की कई महीनों की रिसर्च। बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद हमें मिला एक वायबल सोल्यूशन, और उसी सोल्यूशन को बनाने के लिए हम पहुंचे इसकी हॉस्टल की बालकनी में। उस बालकनी को हमने एक लैब बना दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे फेल्ड प्रोटोटाइप्स भी बने, लेकिन फिर हमारा बना एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट। हमने बनाया चिल्हो।
6: चिल्हो एक कूलिंग टॉवल है, ये पोजीशन है एज अ हीट प्रोटेक्टिव गियर और एन एडवांस गमछा। बस आपको इसको इस बॉटल से निकालना है, इसको ये पानी में डुबोना है, और इसको 1 मिनट तक डूबे रहने देना है आपको, थोड़ा सा और ऐसे करते रहना है। बस आपको इसको ऐसे निकालना है, कोई सा भी पानी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ गर्म पानी यूज़ कर रहा हूँ। आपको इसको एकदम निचोड़ लेना है अच्छे से, बस आपको इसको थोड़ी देर ऐसे झटकना है 2-3 बारी, और इसको अपनी गर्दन पे लगाना है। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा?
8: मॉडर्न गमछा
6: I can feel the cooling.
8: Yeah.
6: और गीला भी नहीं हो रहा है, it's not drenching.
2: गीला नहीं है, क्योंकि I have squeezed it.
9: Jit bhai, it's not wet.
10: It's not wet.
8: ये भाई.
9: But technology क्या है?
10: अब देख।
6: ये basically एक patent filed hydrogel technology है। इसकी वजह से इसमें पानी बहुत देर तक hold रहता है, और जैसे ही हवा interact करती है, ये धीरे-धीरे पानी छोड़ता है और आपको वो cooling sensation देता है।
9: towel का material क्या है?
6: Towel is microfiber.
2: Microfiber.
6: Basically ये technology और थोड़े बहुत iteration के वजह से किसी भी cloth पे implement की जा सकती है।
2: Still in college?
6: Yeah, yeah. Third year, तो हम लोग अभी एक हफ्ते की छुट्टी लेके आए, अटेंडेंस का थोड़ा सा सीन हो रखा है।
2: But it's great to see two young guys having innovated something that is a grassroot level problem.
10: Yeah.
2: It's not a fancy problem.
6: Thank you so much.
9: Yeah, I think at 20, what you guys are doing is good.
2: How long will it take you guys to scale up production?
6: We are planning to reach a 2 crore revenue
2: by the next year, 27-28. Yeah. So 2 crore revenue unse aayega. It is equal to 30,000 workers. Agar hum sirf delivery partners ki baat kare, so they are around 50 lakh delivery riders across all platforms in India. Aur sirf hum unme 30,000 bhi target kare, we will easily achieve the 2 crore revenue.
8: And this is just delivery drivers. So there's other markets like construction workers.
6: I was going to ask for construction workers.
2: Construction workers.
8: It's a bigger market than delivery drivers because it's way more. The numbers are way more. Yeah. And we can also target them.
6: And what do you need to do to increase your production in terms of capital, resources, as well as what milestones do you guys have to hit?
2: That's why we have come here. We need funds. That is 1 crore. Because आधे से ज़्यादा फंड्स हमारे उसमें जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में और हमें थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी है सो वी कैन आइट्रेट एंड मेक इट वेरी गुड और अच्छा बना सके इसको
8: एंड आईपीएन सर्टिफिकेशंस के लिए थोड़ा फंड लगेगा
6: सो राइट नाउ इज योर इज इट पेटेंट प्रोटेक्टेड
8: प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड इज पेटेंटेड
6: ओके
11: एक चीज बताता हूँ कि आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जितना आप सोच रहे हो उससे
2: हाँ सर
11: यू नीड एनी मेंटरशिप आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन एंड 2 crore आपको लग रहा है ये 20 करोड़ भी बन सकता है अगला साल सो यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी आई एम ऑलवेज अवेलेबल
6: वी हैव अ कपल ऑफ लैक वर्कमैन वर्किंग एट डिफरेंट साइट्स इन वेरी हार्श कंडीशंस
2: या
6: एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट योर प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ देम
2: थैंक यू
12: सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस ये जो वंदे भारतम का जो मंच है ना इसका जो दिल है वो ग्रास रूट में धड़कता है एंड यू हैव एक्चुअली कम अप विद समथिंग विच इज सो ग्रास रूट रिलेटेड थैंक यू सो मच हमारे इस प्लेटफॉर्म को इतना खूबसूरत बनाने के लिए सार्थक बनाने के लिए एंड टू गिव इट एक्चुअल द मीनिंग जो जिसके साथ में हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू की थी
6: सर
12: बट एक चीज और भी है जो मुझे मालूम है इनके बारे में बता दो
13: मैं ही बता देता
12: हूँ आप ही बता दो

0: बेसिकली मेरे डैड को नहीं पता है ये, तो थोड़े से वो स्ट्रिक्ट है, उनका ये है कि जॉब करो, थोड़ा स्टेबल हो जाओ और ये सब. मेरे में था कि नहीं यार, ऐसे कुछ रिस्क लेना है और कुछ तो करना है. सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस. और फिर कॉलेज में मैंने पूछा, क्योंकि वही सबसे ईजी सोर्स है को फाउंडर्स, और इनके लिए जिनसे आइडियोलॉजी मैच होती है. तो 40-50 लोगों को पूछा, उसमें से ये भी था, उनका सबका ये था यार हमें तो या तो जॉब करनी है, या हम कॉलेज के फेस्ट में बिजी है, हमें वो करना है ये करना है. इसने मुझे बोला, भाई तू क्या बना रहा है? मैंने बोला ये. बोले यार ये तो बहुत लोगों की हेल्प करेगा. बोले हाँ. बोले चल ठीक है, मैं आ जाता हूँ तेरे साथ में, अपन ट्राई करते हैं बस.
1: पापा का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला ये तो बता दो. पापा
0: बस उनको इसी चैनल के थ्रू पता चलेगा जब वो देखें.
2: व्हाट वाज योर आस्क?
0: वन सीआर.
2: आई विल डू इट.
1: जी देख सेकंड. दिस इज सच अ मोमेंट फॉर हिम,
0: सो क्यूट,
1: फॉर द प्लेटफॉर्म एंड फॉर हिज फादर, बिकॉज इनके फादर को हमने वीडियो कॉल पे लिया है. लेट हिम विटनेस. सर ये आपके बेटे हैं और ये जीत अदानी हैं, और आपके बेटे का इन्होंने अभी आइडिया सुना और उन्होंने कहा कि इनकी अब पूरा सपोर्ट है इन दोनों को, और इनके आइडिया को, इनके इनोवेशन को नॉट जस्ट मेंटोरशिप बट फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने की ऐसी इच्छा रखते हैं जीत.
3: थैंक यू सो मच.
2: कीप बिलीविंग इन योर सन सर.
3: आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गॉड कि इतना अच्छा मौका मिला है. इट शुड बी Every father wants his beta success. I am proud of you, beta. So well done.
1: Aur
0: ye sab main apni mom ko dedicate karna chahunga. Unko maine ye idea bataya tha aur unhone mujhe bahut support kiya hai is pe. Unhone bola bas beta tu kar aur aage chalu ho ja, bas aur kuch nahi.
1: ये अभी का वंदे भारतम के मंच पर अभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आप टॉप 5 फाइनलिस्ट में पहुंचे, जहां आपको जीत के फादर, जिस छोके हो, जिसने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, जिसने विजुलाइज किया था, श्री गौतम अदानी जी, उनसे मिलने का मौका मिल सकता है. और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप फाइनलिस्ट बने तो अपने पापा को जरूर साथ में लेके आइए.
0: मैं मॉम और डैड दोनों को साथ में लेके आऊंगा. फॉर श्योर.
1: सुपर. ऑल द बेस्ट. डू वेरी वेल इन योर लाइफ. कीप शाइनिंग.
4: वेल डन.
1: आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू जीत की, क्या आपने रिलेट किया, यू नो, व्हेन यू स्टार्टेड, बिकॉज़ यू स्टार्टेड वेरी यंग एंड यू सडनली सी टू यंग बॉयज हु जस्ट नीड सपोर्ट, क्या कहीं वो एक इमोशनल फीलिंग भी आप?
2: No, 100%. I saw a little bit of myself in them. I remember my college days also, when I was trying to figure out what project to do and blowing up a couple of projects also. So it's heartening to see two young guys who are, you know, so passionate about it and against all odds.
1: Yeah. And I'm saying, I'm nobody to say this, but I can see a very, very good, very, very fine leader in you. That was so nice of you to actually extend your support to them. That's fantastic. तो स्कोर्स आपके रेडी हैं?
5: यस सर.
1: वंदे भारतम जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. तब तक आप भी इनोवेटिव आइडिया सोच सकते हैं.
6: फर्स्ट एवर फ्लशेबल एंड 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड. तो ऐसा सैनिटरी पैड जो आप कहीं पे भी फ्लश कर दो.
7: यू वांट टू डू अ डेमो?
6: दिस इज अ रेगुलर पैड. Glowpad takes about 800 plus years to decompose.
8: हमने ये बनाया adaptive, wheelchair bound people के लिए एक independent mobility है.
2: Don't look at the disability, look at the magic of the ability that they have. I can go out of the way if तुमने help करी.
9: Across the country, he has tracked the pulse of power. From Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
10: थोड़े में
4: ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
11: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious.

0: आ रही है यहाँ पर, उन्हें देखकर आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है।
1: अमेजिंग।
0: दूसरी बात, जिस आइडिया के साथ में वो आ रही है, दैट माइट मेक यू स्माइल इवन ब्रॉडर बिकॉज़ यू मे जस्ट कनेक्ट विद दैट वन।
1: ओके।
0: प्लीज वेलकम द फाउंडर्स ऑफ फ्लॉसम। हाय, वेलकम वेलकम।
1: मुझे यही करना। स्नैपडील में काम किया, मैक्स ग्रुप में काम किया, हेल्थ केयर बना दिया, शिप रॉकेट में काम किया। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस ऑल इंडस्ट्री टॉट मी हाउ टू स्केल, हाउ टू इनोवेट एंड बी बोल्ड रिलेंटलेसली।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतेश, आई एम CBO CEO एट फ्लॉसम, बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी सिंस वेरी इंसेप्शन एंड रियली एक्साइटेड टू बी हियर।
0: रानू एंड हितेश, राइट?
1: यस।
0: रानू, आपने कहा आप एक बहुत छोटे से शहर से हैं, सांगली, महाराष्ट्र में पड़ता है।
1: हाँ जी।
0: कमाल है, बताइए, मैं ये हमारे शो की खूबसूरती ये है कि हमारे शो के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं और इतने सॉलिड आइडियाज लेकर आ रहे हैं विच कैन एक्चुअली चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री।
1: टोटली सर।
0: आप दोनों फ्रेंड्स हैं?
1: यस।
0: डिफरेंस?
1: सो वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन स्नैपडील और 4 साल इतनी लड़ाई करी कि पता चला कि सारे ऑपोजिट स्किल सेट से। तो जब आइडिया पिच करी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो टिश्यू पेपर पे सेल हो गया था। एंड एक आई वांटेड अ मैन इन द मेंस्ट्रुएशन जो ऑपोजिट व्यू पॉइंट लेके आए, बिकॉज अगर मैं इसको कन्विंस कर सकती हूँ ना, तो आई एम श्योर बाकी लोगों को कन्विंस कर लूंगी।
0: रेडी हैं आप लोग?
1: डेफिनेटली।
0: आपके पास में 3 मिनट है और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
1: डेफिनेटली, थैंक यू।
2: रानो, ये क्या छुपा रखा है?
1: कुछ भी नहीं।
2: अरे बताओ बताओ।
1: कुछ भी नहीं, बट आई एम श्योर यहाँ पे जो बैठा है ना, सबको पता चल चुका है कि मेरे हाथ में है क्या।
2: एग्जैक्टली, अ वुमन्स जर्नी टू डिस्पोज ऑफ अ पैड, एक्चुअली डिस्पोज ऑफ अ यूज्ड पैड इज लॉन्गर देन व्हाट यू थिंक।
1: पहले पैड यूज करो, फिर उसको रिलीज पेपर लगाओ, न्यूज पेपर लगाओ, देन द नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट। डस्टबिन ढूंढो, डस्टबिन हो सकता है बालकनी में, टेरेस में, किचन में जाके डिस्पोज करो। Just imagine how longer the process is. So what we decided is that to solve this problem totally, we did 17,000 consumer research. ठीक है? फिर पता चला कि 3 buckets में problem divide हो रही है. First, India में only 40% of people are using sanitary pads. Just imagine after so many evolvement of the cultures. Second, one pad takes about 800 plus years to decompose. And third, 1 out of 3 menstruators जिससे हमने बात करी ना, वो अपना पैड यूज पैड मोस्टली घर आके फेंक रहा है, बिकॉज वी ऑल नो पीरियड ब्लड इज इम्प्योर, लॉट्स ऑफ मिथ्स एंड टैबूज अराउंड पीरियड ब्लड, सो ये सब चीजें बकेट हो रही है। सो वॉट वी थॉट, लेट्स क्रिएट फर्स्ट एवर फ्लशेबल एंड 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। सो ऐसे सैनिटरी पैड जो आप कहीं पे भी फ्लश कर दो, एंड द ब्यूटी इज दैट बायोडिग्रेडेबिलिटी जो ग्लोबल बेंचमार्क है 180 days का, वी हैव गॉट इट डाउन टू 28 days। So as a consumer, if you're not comfortable flushing it off, आप discard कर दो, वो auto disintegrate होएगा in 28 days.
2: तो मतलब use करो और flush करो.
1: Flush करो, flush करो, flush करो. ये पूरी जर्नी में ना 2.5 साल, we got validated by Ministry of Textiles. तो पहली grade grant आ गई, जिससे थोड़ा push आ गया.
2: We are Flossom, we are smarter, sustainable, awesome Flossom.
1: Awesome Flossom. Amazing.
0: Very impressive.
3: So Ranu, firstly, I love the name. I think Flossom is such a nice name actually. And मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि एक सांगली की लड़की IIT IIM में पढ़ने के बाद with support as well, but she is actually looking at a problem that really needs looking into. This is a very big problem and जो ये pads biodegradable नहीं होते ना, that actually contributes to the plastic waste of the environment and is doing so much damage. So I'm glad that at least I discovered you today. So I want to know a little bit more about the biodegradability and the flushability aspects of your product. You want to do a demo?
2: So I'm just cutting half of a regular pad and a flushable pad. I'll dip both of it.
1: This is a regular pad.
3: Oh, it's like tissue only, then the way that tissue goes
1: it's breaking down.
3: Yeah.

0: जीत, आपकी आपके फादर के साथ में रिलेशनशिप कैसी है? यू नो, वो गौतम अदानी जी हैं, तो वी आर ऑल वेरी क्यूरियस टू नो, आप सबसे छोटे बेटे हैं, आपके बॉस भी हैं और आपके फादर भी हैं, किस तरह की रिलेशनशिप है?
1: मोस्ट पीपल हु आर वर्किंग, वो घर जाते हैं तो यू नो दे आर रिलैक्सिंग. आई डोंट एवर गेट टाइम ऑफ.
0: नहीं, बट कभी डर तो लगता होगा, लाइक जनरली
1: ऑलवेज डर लगता है इसलिए.
0: तो लाइक सपोज करो आपको कोई दिमाग में आइडिया आया, यू वांट स्टार्ट समथिंग न्यू, आप कैसे पिच करते हो उनको?
1: तो अगर इफ देयर इज एनीथिंग न्यू दैट आई एम थिंकिंग ऑफ, इट्स नॉट दैट मैं पूरा सोच के आई एम फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, आई एक्चुअली बाउंस आइडियाज ऑफ हिम, ही गिव्स मी फीडबैक इन हिज ओन वे एंड देन यू नो वी वर्क ऑन इट एंड इटरेट.
0: आई थिंक दैट इज हाउ इट वर्क्स. और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था बिकॉज जो अगली जो इनोवेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो भी एक पिता और बेटे की जोड़ी है.
2: वाओ.

0: Well, painters, मेरा नाम जिग्नेश शाह है, मैं फ्रीडम बीज का फाउंडर हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम ध्वनित शाह है, मैं फ्रीडम बीज का को-फाउंडर हूँ।
0: सर, आज मैं मेरे एक दोस्त की बात करने आया हूँ जो बचपन से दिव्यांग था और व्हीलचेयर बाउंड था। उसकी प्रॉब्लम डिसेबिलिटी नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी डिपेंडेंसी। जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो 4 बार शिफ्ट होना है। उसके लिए उसको पेरेंट्स हो या फैमिली मेंबर्स को उसको उठा के बिठाना, व्हीलचेयर डिक्की में रखना, वो सभी प्रॉब्लम्स है। वो इरिटेट होता था, मतलब कि किसी को तकलीफ देने का फील करता था, वो अवॉइड करता था। मुझे मिलता, मुझे बताता कि यार कुछ ऐसा जुगाड़ करो ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना हो।

तो हमने ये बनाया एडप्टिव। ये टोटल इलेक्ट्रिक है और ये व्हीलचेयर बाउंड पीपल के लिए एक इंडिपेंडेंट मोबिलिटी है।

0: Wow. That's incredible.
1: तू आज इंग्लिश भाई, तू आज
0: अमेजिंग.
1: वाह.
2: तो जो दोस्त के बारे में बात करता था वो आज आपके सामने है. ये एडप्टिव व्हीकल जो हमारा इन्वेंशन है.
0: अमेजिंग.
3: अमेजिंग भाई.
2: थैंक यू वेरी मच.
3: वेलकम वंदे भारतम के मंच पर. एंड ऑफ कोर्स ध्वनित. वेलकम. जनरली जो हमारे जितने अवार्ड फंक्शन होते हैं, ग्लैमरस शो होते हैं, वहाँ पर हमारा हीरो एक मोटरसाइकिल के ऊपर आता है. यहाँ पर आपकी एंट्री बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं थी और आपकी जिंदगी में जो आप कर रहे हैं वो भी किसी हीरो से कम नहीं है.
2: जी सर. थैंक.
3: आप उम्मीद क्या करते हैं आपके सामने?
2: उम्मीद तो ये है सर कि हमारा जो व्हीलचेयर बाउंड कम्युनिटी है ना, उसके लिए जो बाजार में उपलब्ध साधन दो पहिए का स्कूटर होता है और एक ट्राइसाइकिल होती है. मेरा व्हीलचेयर लेके मुझे ट्राइसाइकिल में नहीं जा सकता, ना ही दो पहिए के स्कूटर पे जा. मुझे उठा के शिफ्ट करने के लिए भी दो बंदे चाहिए. तो ये पर्पस मेरा ये है कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो मैं डिग्निटी के साथ, आज आप नहीं मानोगे मैं रहता हूँ 15 किलोमीटर दूर यहाँ से, मैं ये लेके ही आया और एक आत्मविश्वास के साथ आया और आत्मनिर्भर बन के आया हूँ कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है. मेरी 10 साल की जो मेहनत है उसको एक एक मुकाम पे ले जाने के लिए आया हूँ.
3: ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ही की है?
4: सभी चीज हमारी है.
2: सभी चीज आपने बनाया?
4: सब जीरो से.
2: फैब्रिकेट
4: बिल्कुल स्क्रैच है और इसका ना ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. खुद ही से ये सब हमने धीमे धीमे करके असेंबल, मैन्युफैक्चरिंग और जिसको आप ये जुगाड़ जैसा दिख रहा है कुछ, इसको जुगाड़ को अच्छे से शेप में लाने का हमने प्रयास किया.
3: ये जुगाड़ नहीं है, ये प्रोटोटाइप है बॉस.
4: यस, प्रोटोटाइप.
3: ये जुगाड़ नहीं है.
4: हम लोग सालों से
2: तो उसको जुगाड़ी.
0: यू नो लास्ट ईयर एक बार मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो एक महीने तक आई वॉज ऑन द व्हील चेयर. तो जिस तरीके का आपको चैलेंजेस आते हैं वो आप तभी रियलाइज कर सकते हैं जब आप में, और आपने जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि यू फील वेरी कंस्ट्रिक्टेड कि आपको हमेशा लोगों की जरूरत है. और इंडिया जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है. हमारी रोड्स में खड़े हैं, हमारे रैंप ऐसे हैं, तो हमें लोगों को साथ में लेके साथ में जाना पड़ता है. तो इसलिए इस स्पेस में हमें इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है. एंड आपने जिस करेज से अपने प्रॉब्लम को अप्रोच किया है इन अ वे दैट यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, दिस इज अमेजिंग. अमेजिंग.
1: इग्नेश भाई, जय जिनेंद्र.
2: जय जिनेंद्र.
1: कैन आई कम देयर एंड जस्ट ग्रीट यू?
2: या.
1: आई थिंक फैंटास्टिक. आई एम रियली मूड. आई थिंक गुजराती होवानो मने आजे गर्व छे. आई थिंक वी आर ऑल डिसेबल्ड बाय आवर थिंकिंग and not by, I think, physical, but your studio created is commendable. Thank you so much.
2: Thank you very much.
1: Right.
0: Rajiv, जैसे आपने बोला कि उन्होंने hero के जैसे entry की है, इसी तरीके से he is going to be the hero for many people.
1: Exactly.
0: Yeah. That is inspirational कि we get to witness this today.
5: एक चीज जो आपने बताई, which you know always connects with me, is के कोई भी दिव्यांग जन होता है तो उनको sympathy की जरूरत नहीं है.
2: 100%.
5: उनको कभी किसी की सिंपैथी, उनको क्या चाहिए कि एम्पैथी चाहिए. डोंट लुक एट द डिसेबिलिटी, लुक एट द मैजिक ऑफ द एबिलिटी दैट दे हैव. और यू नो आपने जो बनाया है ये, इट्स रियली यू नो सीइंग यू, आपको जो फ्रीडम मिला है, आई होप के आप सैकड़ों सैकड़ों और लोगों को भी दे सको.
2: जी जी. थैंक यू. आज जो हम आने का मेरा मकसद मेन ये है कि इसको वैलिडेशन करवाना है. ये मुझे कल से बेचना या मार्केटिंग के लिए, उसके लिए नहीं आया हूँ सर. इसको वैलिडेट करवाना है. उसका एक पूरा एक रोड मैप है. आप जानते हो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, राइट? भले सोशल इम्पैक्ट का काम है, भले हमें एक आत्मनिर्भर बना रहे, पर ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है. तो हमें ये पूरा एक रोड मैप के लिए हमें एक्सपर्ट्स की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जितना स्केल है, इसका जितना स्केल है, ये यहाँ तक पहुँचा है. पर अभी हमें एक्सपर्ट्स का इनपुट चाहिए, हमें मेंटरशिप ऐसी चाहिए कि हमें ये पूरा रोड मैप क्लियर करके, सभी माइलस्टोन क्लियर करके लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, तब जाके मेरे जैसे वो लोग भी आत्मनिर्भर होंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे.
5: आई कैन गो आउट ऑफ द वे. मैंने कह चुकी हूँ.

0: I'm just wondering actually, kya score denge aap? 10 में से 11?
1: I think it's beyond scores.
0: It's beyond.
2: Yeah, yeah. This is going for sure.
0: आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सफर थमेगा नहीं। आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।

0: आपको क्या क्या दिख रहा है?
1: रूती मुझे सब कुछ डिस्क्राइब कर रही है। तो मेरे सामने जीतदानी सर है और इधर उनके लेफ्ट में है पुनीत गुप्ता सर और अमन गुप्ता सर।
2: ये तो बहुत अलग है, ये तो मतलब इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।
3: यू आर लिटरली चेंजिंग लाइफ।
4: अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया। Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आरती और मसाला।
9: India's rupee powered Conto card.
10: India's college ID has got superpowers now.
11: We are empowering the university Gen Z students.
12: हमारे मांगे पूरी करो।
13: साथ ही विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले।
0: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
14: कैप्चरिंग। एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
3: क्या बात है। You are literally changing lives.
2: It can be a revolution.
4: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर प्योर मसाला।
4: इंडियाज रूपी पावर्ड कॉन्टो कार्ड,
5: इंडियाज कॉलेज आईडी हैज गॉट सुपर पावर्स नाउ।
6: वी आर एम्पावरिंग द यूनिवर्सिटी जेंजी स्टूडेंट्स।
7: हमारे मांगे पूरी करो।
8: सारथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है। अकेले
9: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
10: कैप्चरिंग। एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
11: क्या बात है।
12: You are literally changing lives.
13: It can be a revolution.
14: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इंडियाज रूपी पावर्ड कॉन्टो कार्ड।
6: इंडियाज कॉलेज आईडी हैज गॉट सुपर पावर्स नाउ।
7: वी आर एम्पावरिंग द यूनिवर्सिटी जेंजी स्टूडेंट्स।
8: हमारे मांगे पूरी करो।
9: सारथी विजुअली इंपेयर पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है। अकेले
10: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
11: कैप्चरिंग। एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
12: क्या बात है।
13: यू आर लिटरली चेंजिंग लाइव्स।
14: इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।
15: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite. India's rupee power.

0: उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इसलिए बेवजह के मुद्दों को जो है वो आगे करके, आप लोग स्वयं हल्द्वानी के लोग हैं, आप लोग यहाँ के साक्षी हैं, उत्तराखंड में कौन इस बात को आज स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव होता है।
1: ये सब धर्म को बीच में ला रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपके सामने हुआ जो हुआ, शुद्धिकरण का सारा आपने वीडियोस देखे हैं, और अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा करें क्या, FIR कर नहीं रहे। निंदा तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के मुंह से नहीं निकली कि साहब देश के इतने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका इस तरह से अपमान हो, इनकी पार्टी द्वारा अपमान हो, इनकी पार्टी की डबल ट्रिपल इंजन सरकार हो, और एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला निंदा का।
2: राहुल जी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, द केस ऑफ टू टी कप्स, एक डिस्पोजेबल कप और एक ग्लास का कप। ये जो उन्होंने जो एग्जांपल दिया था खड़गे जी के लिए दिया था कि उनका प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण का उत्तराखंड में कुछ हुआ था जो कांग्रेस ने उसको तिल का ताड़ बनाया, बड़ा चढ़ा के कुछ बोल दिया, जो हमारे बीजेपी वालों ने एकदम खंडन किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी खंडन किया है। हमने कभी किसी का तौहीन नहीं किया है।
3: इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो सकती है कि खड़गे जी के रैली के बाद यह कहकर के शुद्धिकरण किया जाए कि वो दलित है। इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, आप शुद्धिकरण कर रहे हो, आप दलितों से इतनी नफरत करते हो, FIR होगी और खड़गे जी का अपमान हम नहीं सहेंगे।
4: ये जब खड़गे जी ने राज्यसभा में मामला उठाया, हमारे उस समय नेता सदन JP नड्डा जी वहीं बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा, उनका बयान भी तो सुन लो, कि हम किसी भी इस तरह की कोई घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, साफ साफ कहा उन्होंने।
5: शुद्धिकरण का विपरीत ही छुआछूत है, छुआछूत तो आप मानते हैं तो शुद्धिकरण करते हैं। ये क्राइम किया आपने, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, आपने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया।
6: सामने से जो जवाब आया है उससे तो साफ दिख रहा है कि कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, क्या राहुल गांधी खुद उत्तराखंड?
5: पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि महेंद्र भट्ट जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शुद्धिकरण को सपोर्ट किया है और फिर धामी जी ने भी किया है, तो एक तरीके से छुआछूत करने का कमिट करने में ये भागीदार हो गए। इन सब पे कानून का के हिसाब से मुकदमा बनता है। अमृतसर में तो FIR भी, जीरो FIR दर्ज भी हो गई है।
7: In some breaking news now coming in, Youth Congress workers have staged a protest outside the BJP office in Bengaluru's Malleshwaram, alleging irregularities in the NEET examination. Now Congress workers

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
6: India's rupee-powered Konto card. India's college ID has got superpowers now.
7: We are empowering the university Gen Z students.
8: हमारे मांगे पूरी करो।
9: सारथी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को चलने फिरने में मदद करता है अकेले।
10: मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
11: कैप्चरिंग। एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है।
12: क्या बात है?
13: You are literally changing lives.
14: It can be a revolution.
15: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्थोर मसाला।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, large

0: कहानी है एक लड़के की, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस लड़के की, जो 16 साल की उम्र में ही अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचा। एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया। और अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने वाले इस शख्सियत का नाम है गौतम अदाणी।
1: इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद कुड बिल्ड व्हाट स्टैंड्स हियर टुडे, देन देयर मस्ट बी 1000 मोर गौतम अदाणीज सिंपली वेटिंग फॉर समवन टू नोटिस देम।
0: इसी सोच के साथ उन्होंने 24 जून को शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट, वंदे भारतम।

कमिटमेंट है वंदे भारतम का, देश के ग्रास रूट के सपनों को करोड़ों की सहायता देने का, और इस राष्ट्रीय धरोहर को पूरे वर्ष लगातार जारी रखने का।

सोशल मीडिया पर वंदे भारतम के इंस्पायरिंग वीडियोस को 41 करोड़ से अधिक बार देखा गया और 82 करोड़ से अधिक इंप्रेशंस आए। तभी तो एक महीने में ही 26,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आईं, वो भी इन विभिन्न कैटेगरीज में जो आज के भारत की हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। 26,000 में से 200 इनोवेटर्स चुने गए, सिलेक्टेड फाइनलिस्ट्स अहमदाबाद पहुंचे। 9 अगस्त को अहमदाबाद के शांतिग्राम में एक शानदार बूट कैंप आयोजित हुआ। 10 से 13 अगस्त के बीच वंदे भारतम का स्टेज इनोवेशन के स्टार्स से जगमगा उठा। 20 दिग्गज मेंटर्स देने वाले हैं इस नई राष्ट्रीय धरोहर को आकार। इसी मंच से टॉप विनर्स को मिलेगी करोड़ों की प्राइज मनी। साथ ही हमारी स्पेशल कैटेगरीज वुमेन, रूरल, दिव्यांग, सस्टेनेबल को दी जाएगी स्पेशल प्राइज मनी भी। अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार इस बार, तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, जुड़ो और पाओ योग्य निवेश, मेंटर या अडानी ग्रुप का सहयोग। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती हैं। और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है, तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज।

Welcome to Vande Bharatam, an initiative by Gautam Adani. Mentors, मैं एक चीज सोच रहा था कि कुछ स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं बिजनेस के लिए, कुछ स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं जरूरत की वजह से, पर कुछ स्टार्टअप शायद ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए एक गिफ्ट होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको उसकी बेहद जरूरत होती है और वो इनोवेशन उनकी जिंदगी को बदल देते हैं। उनकी इनोवेशन कुछ इसी तरह की है। हमारे जो पहले इनोवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्लीज वेलकम टॉर्चिट स्टार्टअप के फाउंडर मिस्टर हनी भक्त चंदानी।

0: प्रथमेश आप यहाँ पर, मैंने तो कहा था कि हनी भगचंदानी।
1: ये सब पर जैसे रेनबो से पहले धूप और बारिश आती है और फूल से पहले कलियाँ, वैसे फाउंडेशन से पहले मैं आ गया।
0: अरे आप आ गए, क्या बात है, कितनी प्यारी बात की इन्होंने,
2: बहुत बढ़िया।
0: सो वेलकम टू वंदे भारतम प्रथमेश।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: आपको मैं दिख रहा हूँ?
1: हाँ, आप ज्योति मुझे सब कुछ डिस्क्राइब कर रही है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे सामने जीत अडानी सर है और इधर उनके लेफ्ट में है पुनीत गुप्ता सर और अमन गुप्ता सर और राइट में है स्वाति मैम और मितेश सर।
0: क्या बात है, और ये बताओ कि मैंने क्या पहन रखा है?
1: मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप एक बार जजेस की जो चेयर है आप वहाँ पर जाइए, वो पूरा एरिया स्कैन करके बता सकती है।
0: ओके, मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
1: यस, कैप्चरिंग।
3: एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है। उसके दाईं ओर 5-6 अन्य लोग सुनहरी कुर्सियों पर बैठे हैं।
0: क्या बात है,
3: पीछे की बड़ी स्क्रीन पर पेड़ों और घरों के साथ एक शांत ग्रामीण दृश्य दिख रहा है।
0: What an innovation, please.
2: Thank you.
0: Round of applause.
2: So sweet. So nice.
0: अच्छा, तो आप ये बताओ कि हनी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?
1: वो बिल्कुल आ रहे हैं सर। हनी भैया आ जाइए, वेलकम।
4: Good job, man. Very good.
0: क्या innovation है? I think so many of them जिनके पास में eyesight नहीं है,
5: yes.
0: वो कितने grateful होंगे आपकी इस innovation के लिए।
5: Thank you sir. उसके लिए हमको भगवान की दया से बहुत सारे awards मिल चुके हैं, बहुत सारे achievements मिल चुके हैं और ऊपर वाले की वजह से हमने बहुत लाखों लाइफ को इम्पैक्ट भी किया।
0: जी, और आज आप वंदे भारतम के मंच पर हैं, आपकी पिच रेडी है?
5: 100%।
0: जी, तो आपके पास में है 3 मिनट का समय और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
5: ओके, सो मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं प्रथमेश से सुनना चाहूंगा कि आप, प्रथमेश आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो?
1: मेरा सपना एक IAS ऑफिसर बनना है और आप सब लोग को पता है उसमें कितनी ज्यादा पढ़ाई होती है, जो की वजह से मैं बहुत इंडिपेंडेंट बना हूँ और पढ़ाई बहुत आसानी से हो पाती है। पहले मेरे पास ये डिवाइस था सारथी, सो उससे मैं मार्केट लाइक शॉपिंग घूमने जा सकता था, पर अब ज्योति की हेल्प से मैं शॉपिंग कर भी लेता हूँ अब आराम से।
5: मेंटर्स नमस्ते, जिस तरीके से प्रथमेश का सपना है IAS ऑफिसर बनना, उसी तरीके से हमारे करोड़ों दिव्यांग भाई बहन के सपने हैं इंजीनियर बनना, टीचर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना। वो सपनों के अपॉर्चुनिटी के बीच में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं अपने ग्लासेस निकाल दूं तो मैं आप सबके चेहरे ध्यान से नहीं देख पाऊंगा, अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। जिस तरीके से चश्मे मुझे हेल्प करते हैं, उस तरीके से असिस्टिव डिवाइसेस हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हेल्प करते हैं अपने काम को आत्मनिर्भरता के साथ करने में। और वहीं से शुरुआत हुई ज्योति AI ग्लासेस की। अगर मैं मोबिलिटी डिवाइस की बात करूँ तो 40,000 से 50,000 रुपये का डिवाइस था, हमने उसको भारत में बनाया 3,000 से 4,000 रुपये में।
4: Wow.
5: और ज्योति AI ग्लासेस के थ्रू हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन आपके सामने क्या हो रहा है ना सिर्फ वो देख सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि वो एजुकेशन लाइक कोई भी प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ सकते हैं, वो भी 90 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में। और सबसे बड़ी बात कि इट्स अ गेम चेंजर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ज्योति AI से आज 40,000 से ज़्यादा हमारे दिव्यांग भाई बहन PhD कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स खुद लिख रहे हैं। और हमारा सपना ये है, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाए, हम सारे दिव्यांगताओं के लिए, जैसे हियरिंग है, ऑटिज्म है, कम्युनिकेशन है, उन सब के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स AI के थ्रू बनाएं। और सबसे बड़ी बात, मेरा मिशन ये है कि हम इंडिया को ग्लोबल हब बनाएं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। और मेरा विजन ये है कि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मेरा आस्क ये है कि हम 7 करोड़ के बदले 3% की इक्विटी हम ऑफर करते हैं। और साथ में हम एक सिर्फ कंपनी नहीं बना रहे, हम एक सुनहरे भारत में ऐसा बना रहे हैं कि डिसेबिलिटी कोई सपने की लिमिट ना बने। हर किसी में दम है, हर किसी के अंदर टैलेंट है, हम सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और साथ में मिलकर इंडिया को ग्लोबल हब बनाते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। जय हिंद।
4: अमेजिंग, वाओ,
6: फैंटास्टिक,
4: टू गुड, टू गुड। रत्नेश, यू आर सो इंस्पायरिंग।
6: वेरी नाइस, गुड जॉब। ये जो असिस्ट वाली टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत अलग है, ये तो मतलब इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।
5: 100%, दैट्स व्हाई आई एम हियर, के हम साथ मिलके ये इनोवेशन से ग्लोबल कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं।
7: तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट आएगा चश्मे के साथ या अलग से इस पे चश्मे पे भी मैं अपने चश्मे पे लगा के यूज कर सकता हूँ?
5: जो आप बात करें सर वो हमारा सेकंड वर्जन था जो थी AI Pro, वो कोई भी ग्लासेस को AI ग्लासेस बना सकता है। और जो प्रथमेश ने पहना वो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है जो थी AI विजन ग्लासेस, कम्प्लीटली वायरलेस है।
7: क्या कॉस्ट रहेगा दोनों का?
5: इसका प्राइस 20,000 रुपये।
7: ओके,
5: और साथ में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ, हमारा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हमारा यही मोटो है कि यार हम किस तरीके से हमारे लाखों करोड़ों दिव्यांग लोगों तक पहुंचे।
8: तो आर सेल टुडे हैपेंस थ्रू ओनली आवर ओन प्लेटफॉर्म या आप दूसरे प्लेटफॉर्म?
5: नो, इट्स ऑल चैनल्स, लाइक आपको हमारे प्रोडक्ट सारे चैनल्स में मिल जाएंगे, अमेजोन से लेकर बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। B2B2C भी बहुत सारे जो मेडिकल शॉप्स हैं, हमने ऑफलाइन भी एक्सपेंशन किया है, हमारे खुद के भी सेंटर्स हैं, हमने वहाँ पर भी एक्सपांड किया।
8: तो आज वंदे भारतम के प्लेटफॉर्म से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है?
5: मैं आज हियर के 7 करोड़ से हम R&D में खर्चा करेंगे, हम मार्केटिंग में खर्चा करेंगे और अपना कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और हम इसको इकोसिस्टम बनाएंगे।
4: Well, सबसे पहले तो आई थिंक हमें इनको वंदे विंग्स देना चाहिए।
6: या, है ना? 100%।
4: यहाँ पे है आपके पास इतना, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन, दैट्स इनक्रेडिबल।
0: मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, जो मेंटर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको वंदे विंग्स मिलने चाहिए, और वंदे विंग्स का मतलब है कि आपको 10 दिन की मेंटरशिप मिलती है अदानी ग्रुप की तरफ से।
4: रत्नेश, आई रियली वांट टू गिव यू अ हग आल्सो, यू आर सो इंस्पिरेशनल, सो नाइस टू मीट।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: हनी, कोई ऐसा बड़ा आपको मोमेंट याद है जहां पर आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
5: कोविड का जब लॉकडाउन आया तब हमारे जो एक ही प्रोडक्ट था तो वो सारा का सारा डंप हो गया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक। और जितने भी पैसे थे, जितने भी हमने पैसे बचाए थे तो वो सारे खर्च हो गए और हमारे पास रन में बचाए नहीं। और जितनी भी टीम थी तो वो 40 लोगों की टीम में से हम 3 या 4 लोग बचे। तब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी और

0: ट्रस्ट पे आ रहा है एंड आपका कंपनी उस टाइम पे बंद हो रहा है, बट उसने बोला कि मुझे तुम पर विश्वास है एंड वो यकीन ने
1: आपको यहाँ तक ले आए, लेकिन इतने बड़े मंच पर आप आए अपनी वाइफ को लेकर नहीं आए।
0: अरे शी वो दिल से आना चाहती थी बट नहीं आने थी,
1: लेकिन हमने जब उन्हें बुलाया दिल से तो वो यहाँ पर आ गई है। प्लीज प्लीज वेलकम हनी जी की वाइफ। व्हाट अ सरप्राइज।
2: So proud of you, dude.
1: Welcome, Ritu
0: ji. I am proud of you to have read my life.
1: Ritu ji, thank you so much. आपको हमारी तरफ से कि आपने इस innovation को इतना support किया कि आज ये वंदे भारतम के platform पर खड़ी है। आपकी आंखें नम हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप?
2: Why he cried and he became emotional is because I am having a medical condition now. So, I'm suffering from stage 3 breast cancer.
3: Oh no.
2: My surgery is done. My chemos are done. I have recently got my 7th chemo. Only one chemo is left. The hairs that you see all are artificial. So with that condition, if I can come and support him.
3: Hats off to you, Ritu. This is not easy at all. Both of you, you are literally changing lives.
4: Truly inspired.
3: Kitna kuch diya hai aapne.
2: Being myself a doctor, but now a patient, but most importantly, a proud wife.
1: And I'm very sure ki aapki jo positivity hai, sakaratmak soch hai, आपका जो सपोर्ट करने का जज्बा है, आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी सून।
2: थैंक यू।
5: आई वांट टू ऐड समथिंग।
1: या प्लीज पुनीत।
5: तो मैं 1.5 साल पहले ही फादर बनाऊँ और उसके बाद पता नहीं क्या बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशन मेरा अलग से निकल रहा है। प्रथमेश को देख के एक तो मैं उसका फैन हो गया और प्रथमेश बहुत अच्छे लग रहे हो आप। एंड मैं आपको अभी बिजनेस देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 50 लाख के डिवाइसेस हम खरीद के अंडर प्रिविलेज बच्चों को डोनेट करें, तो मेरी तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो मुझे बहुत अच्छा
1: लगेगा। मुझे लगता है ये वंदे भारत का प्लेटफॉर्म इसीलिए इतना खूबसूरत है बिकॉज वी फील फॉर ईच वन ऑफ अस। So congratulations aapko and thank you so much Puneet for being so kind. Hi. And of course

0: तो मेंटर्स, हमारे जो अगले इनोवेटर यहाँ पे आने वाले हैं, तो बुलाते हैं कोलकाता से क्वांटो के इनोवेटर्स सौरभ चक्रवर्ती और अनमित्र घोष को। वेलकम वेलकम टू वंदे भारतम।
1: थैंक यू सो मच।
0: यू आर रेडी विद द पिच?
1: यस वी आर।
0: और द मेंटर्स आपके सामने बैठे हैं, आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
1: नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चक्रवर्ती, फाउंडर एंड सीईओ।
2: नमस्ते, मैं अनमित्र घोष, को-फाउंडर एंड प्रोडक्ट एंड ग्रोथ ऑफिसर।
1: राइट आफ्टर आई फिनिश माय इंजीनियरिंग फ्रॉम कलकत्ता, मूव्ड टू बोस्टन यूनिवर्सिटी, लेटर टू इंपीरियल कॉलेज लंदन, आई रियलाइज दैट बीइंग अ स्टूडेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ सुपर पावर। अ सुपर पावर वेयर द स्टूडेंट्स आर कम्युनिकेटिंग देयर स्टूडेंट स्टेटसेस टू डिफरेंट ब्रांड्स एंड बिजनेसेस, एंड एट द एंड दे आर क्यूरेटिंग सर्टेन ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। At the end, the students are purchasing at a heavily discounted rate.
2: That sounds like a very empowering, yet an inclusive ecosystem.
1: Absolutely. And that's when I was thinking about it, jab maine socha, agar Western ecosystem mein, unke youth ke liye, unke future consumers ke liye, ek aisa superpower hai, to India ka Gen Z university population, which is the largest in the world, wahan pe aisa ek ecosystem kyun nahi hai?
2: Abhi hai na, India's RuPay-powered Skonto card. India's college ID has
1: got superpowers now. So, इस super generation को superpower देने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। And our asks are pretty simple, sir. We are looking to enable this card at the Adani University, as well as get your guidance from the Vande Bharat team, just like every other startup.

0: तो हमारे जो अगले इनोवेटर है ना, तो ये आ रहे हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। प्लीज वेलकम डॉक्टर स्पेक्ट्रा। तैयार हैं पिच के साथ में आप लोग?
1: बिल्कुल तैयार हैं।
0: ओके, आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
2: कैन यू इंक्रीज माय ऑडियो हियर प्लीज, कम इन इफ यू कैन हियर मी, कैन यू इंक्रीज माय ऑडियो, आई कांट हियर
3: दैट।
1: क्या हुआ, इरिटेशन हुआ आवाज से? जी आप कल्पना करो, इस तरह की आवाज आपको अगर 24 घंटे आपके कानों में बजे और रात में उसकी वजह से क्या आप सो पाओगे? क्या आप ऑफिस में काम में फोकस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टिनाइटिस। कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों को ये टिनाइटिस की समस्या है भारत में। इन समस्याओं की वजह से लोगों का सिर्फ स्लीप प्रॉब्लम ही नहीं, अटेंशन, कंसंट्रेशन, बच्चों का कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, करियर ग्रोथ, ओवरऑल सोशलाइजेशन और लाइफस्टाइल इफेक्ट करती है। जी हाँ, इन्हीं समस्याओं के सोल्यूशन के लिए आया है डॉक्टर स्पेक्ट्रा वेलनेस। तो हम लोगों ने होम बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस बनाई हैं। ये डिवाइसेस जो हैं वो इजी टू यूज है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉन इन्वेसिव, ड्रग फ्री और पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जिसे CDSCO ISO सर्टिफिकेशंस प्राप्त है और पेटेंटेड भी है। हमारा सबसे हॉट प्रोडक्ट है टिनाइटिस, जो कि कानों में सीटी घंटी बजती है उसके लिए है हमारी टिनाइटिस रिलीफ मशीन। और हमारे इनोवेशंस को नेशनल लेवल पे भी बहुत अप्रिशिएशन मिला है।
4: पिछले 5 साल में हम 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स की लाइफ चेंज कर चुके हैं। हमारे अभी 10 से ज्यादा मेट्रो सिटीज में डिवाइसेस अवेलेबल है और अगले 2 साल के अंदर हम 1,000 से ज्यादा हॉस्पिटल, क्लिनिक और फार्मेसी के संग टाइप करके इसको फैलाना चाहते हैं। इसके लिए हम 10% इक्विटी के लिए 2 करोड़ का आस्क करते हैं।
1: हम आपसे सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं, आपकी मेंटरशिप, आपका गाइडेंस, आपका क्लिनिकल कोलैबोरेशन और ग्लोबलाइजेशन की आशा रखते हैं, ताकि हम लाखों करोड़ों लोगों तक इस इनोवेशन को पहुंचा के भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाकर देश में तरक्की कर सके।
5: क्या प्राइसिंग है इसकी, ये डिवाइस प्राइसिंग?
4: डिवाइस प्राइसिंग हमारा 25,000 से हम देते हैं 1 ईयर के फॉलोअप पैकेज के साथ।
6: आई थिंक टिनाइटिस एक बहुत एक एरिया है जहाँ पे इनोवेशन की बहुत जरूरत है। आई वुड लव टू कनेक्ट यू टू सम हॉस्पिटल ओनर्स, सो वी शैल कनेक्ट ऑन दैट।
1: थैंक यू, थैंक यू।
7: You know, I really like your passion. Yeah.
6: Sure. Yeah, I think you should.
7: We sure.
6: Should, nah, should, that. Should we do the? Yeah.
1: Thank you so much.
8: We'd love to mentor you more.
1: Thank you
8: so much. Thank you. Congratulations.
4: Thank you.
8: Great meeting you.
0: Mentors, time to score. आप अपने अपने scores दे सकते हैं।
9: वंदे भारतम के मंच पर दिखे देश के कोने कोने से आए अनोखे आइडियाज। इनोवेटर्स ने अपने यूनिक आइडियाज और विजन से मेंटोर्स को किया प्रेरित।
10: सही टाइम पे एक भरोसेमंद कबाड़ी वाला मिलता ही नहीं, जिसके वजह से हम अपना कीमती कबाड़ कचरे में फेंक देते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है कबाड़ी मैन।
9: देहरादून की सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज के पोर्टेबल ECG स्पंदन।
11: स्पंदन ECG एक ECG मशीन नहीं है, ये कार्डियक केयर इकोसिस्टम है।
9: और पुणे के डेनोवो बायो इनोवेशंस के ऑटोमेटेड सूचरिंग सिस्टम स्मार्ट स्टिच ने मेंटोस को इंप्रेस किया।
12: हम बनाते हैं एडवांस इनोवेटिव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट।
9: वहीं बरीपदा उड़ीसा से आए कैसवीटा प्राइवेट लिमिटेड के बायो सेल ग्लू बैंडेजेस और उन्हें मिले मेंटोर से वंदे विंग्स और 10 दिन की मेंटरशिप अदानी ग्रुप के साथ।
0: आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। आप ये सारे एपिसोड देख सकते हैं NDTV 24/7, NDTV इंडिया, NDTV प्रॉफिट और NDTV डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सफर थमेगा नहीं, फिर मिलेंगे भारत के नए कल में। वेलकम संगा रेड्डी तेलंगाना से भौम्या इनोवेशंस के इनोवेटर दीपक रेड्डी एंड अमरेश जना।
13: आप अगर आज भौम्या पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे,
3: आप भारत का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
13: लेट्स डू 2 crore एंड फॉर 20%। ओके, दैट्स आवर ऑफर टू यू।
14: सर, कैन वी डू इट लाइक 10% इक्विटी फॉर 2 crore?
15: Has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
16: Thank you. Navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
17: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
18: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Electricity bill paid.
21: Really?
20: Your mobile recharge is done.
21: How?
20: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
21: It's the Mahi way.
22: Hindustan mile, Hindustan se.
23: Desh ka tire, JK tire.
24: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
25: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
24: अरे मेरे राजा,
26: सबका राजा आर्थ्य और मसाला।
27: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
28: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
29: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
15: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history for 3 decades. NDTV has been there for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.
30: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
31: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
32: The RNA, the
33: How
32: Ra.
33: Are you doing, sir?
32: So you are the Ra in the Ga.
33: Yes, it's a chef's table.
32: And Gagan, it's once in your life experience.
33: Gagan's signature dish, which is the yogurt explosion.
34: It is an explosion.
32: And there's a chicken shorba. We are making it like a espresso.
34: Your food is very political, huh?
32: 100%. It's always a message.
34: Why is it important for you to make food look like something and taste like something else?
32: I think the most seductive dress in the world is a sari. What I'm making food is fashionable like a sari. I was watching Rahul covering Bengal election and all that. So suddenly I saw Veer and him eating jhalmudi in his studio.
34: झालमुरी है।

0: बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
0: देश का टायर जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अ सेकंड चेंजेस एवरीथिंग, अ मिनट मूव्स अ नेशन, एन आवर बिकम्स हिस्ट्री। फॉर थ्री डेकेड्स NDTV has been there for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters. Meetha,

0: The dead body of one of the victims of the devastating Nepal floods being brought to a central point in Devighat, a small village on the banks of the Trishuli River. This is among the worst hit areas. Flood waters rose 3 stories high. No one still knows how many were killed here, trapped in their homes, or how many were carried away by the rampaging river. This mother of 3 children escaped with her life. Her children also made it. She's back with her husband to recover whatever she can from what was her home.
1: अब कहाँ जाएंगे?
2: अब कहाँ जानुहुन्छ तपाईं?
3: हामी अब जान त कहाँ जाने अब काई केही छैन।
4: जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है, कुछ घर नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है।
1: तो अब कहाँ रह रहे हैं? आप यहीं रह रहे हैं या और कहीं जाके रह रहे हैं रात को?
3: अब अहिले चाहिँ त्यहाँ माथि अस्पतालमा छौं, आयुर्वेदिक।
4: आयुर्वेदिक अस्पताल में बैठ रहे हैं अभी, यहाँ से निकल के।
1: और बाद में क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है अभी तक?
4: अब कि आइडिया सरकार क्या बोलेंगे, सरकार कुछ ये पीड़ित लोग को कुछ राहत मिलेगा और घर बना के कहीं रख देंगे, वो तो मालूम नहीं है।
0: Suddenly there's panic everywhere. Women and children start running. Others get into their bikes and flee.

0: people in this entire remarkable country get over their grief to deal with this horrific tragedy. Far south of where I am in Chitwan, we have this report about how authorities are trying to deal with several of the bodies, in fact more than 100 bodies in that particular area. They've all been brought to a mortuary. There are DNA tests which are on. The worry is that they would have to be cremated at some stage. Their last rites will have to take place. What happens to those people who've been washed down the river, who can never be identified?
1: I'm right now inside the Deoghat forest of Chitwan district, and the reason why I'm here is that we all know the maximum number of bodies of people who died in this tragic incident of Nepal, the flash floods in Nepal, was fished from Chitwan. Now it has been 4 days already. The bodies are decomposing. It's giving foul smell. So now the local administration, the Nepal government, has decided to bury these bodies. So what they are doing is, you can see the Nepal police jawans out there. The graves are being dug over there. Nobody is allowed to actually go and shoot those graves. So we are refraining from going there. But you can see the Nepal police jawans over there. What they are doing is, they are clicking the pictures of those deformed bodies. They are also taking the DNA samples, and then they are waiting for the relatives to come and identify the bodies through picture. And once they identify the body, their DNA sample would be matched. Till then, these bodies would be buried here. So it's a mass grave area, you can see. If you talk about Chitwan, the total capacity of the keeping the body in the mortuary is 50, and they already have 200 plus bodies out here. So it's getting increasingly difficult for the administration or the government out here to manage to keep the bodies, and wait for the relatives to come. So they have found out the solution, these mass graves in the Deoghat forest of Chitwan, where these bodies will be buried. यहाँ के CDO यानी कि जो जिला अधिकारी होते हैं उनके पास हम हैं, और ये चितवन जिला जो है, हालांकि यहाँ पे जो त्रासदी हुई है त्रिशूली नदी से, उससे अफेक्टेड नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो है वो चितवन जिले में ही मिला है। अभी भी लगभग 200 से ऊपर डेड बॉडीज़ है, और यहाँ हमने आपको दिखाया कि कैसे मास ग्रेव बना के लोगों को दफन किया जा रहा है, उनके DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से पिछले 4 दिनों से लगा हुआ है इसके मैनेजमेंट में, क्योंकि डेड बॉडीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में निकल रही है। जो त्रिशूली नदी है, जो यहाँ के नारायणी होती है, वो छिछली नदी है, और वहाँ पर डेड बॉडीज़ जो है नदी के किनारे पाया जा रहा है, जिसके चलते आप देखें कि आर्म्ड पुलिस फोर्स हो, नेपाल प्रहरी हो, या फिर नेपाल की सेना हो, इनकी अलग अलग टोलियां टुकड़ियां जो हैं वो डेड बॉडीज़ को फिश आउट करने में नदी से लगी हुई हैं। गणेश अर्याल साहब हैं, ये जिला अधिकारी हैं, जिसको यहाँ CDO बोलते हैं। सर, ये बताइए कि अभी तक आप तो पिछले 4 दिनों से ये त्रासदी हुई है, आप लोग कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या अभी तक डिफिकल्टी?
2: हाँ, उतना डिफिकल्टी तो नहीं है, लेकिन दिस सिचुएशन वाज नॉट यू नो प्रीवियसली अज्यूम्ड सिचुएशन। इट्स रियली ट्रेजिक एक्सीडेंट फॉर अस, सो वी आर ट्राइंग टू मैनेज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव बीन फेसिंग हियर इज टू मैनेज द डेड बॉडीज।
1: आपके पास जो मॉर्चरी है, मुझे बताया गया कि उसमें 50 के आसपास की कैपेसिटी है, और अभी आपके पास लगभग और ऑलमोस्ट 200 के आसपास बॉडीज़ हैं, और बहुत सारी बॉडीज़ है वो क्लेम करने भी कोई नहीं आ पा रहा, पहचान भी नहीं।
2: हमारे पास अभी तक 264 डेड बॉडीज़ मिल गया है, उनमें से सिर्फ 10 लोगों का आइडेंटिफाई हो चुका है, और उन लोगों ने डेड बॉडी लेकर गया भी है। वो बाकी दो 54 है वो हमारे पास है, उसमें जो जब वो डेड बॉडी जो था वो डिकम्पोज होने लगा, इसीलिए हम लोग उसको टेम्परेरी बॉरियल सिस्टम से रख दिया है।
1: क्या है, व्हाट इज टेम्पररी बरियल सिस्टम?
2: टेम्पररी बरियल सिस्टम क्या है कि ये ICRC का स्टैंडर्ड है, हमारे नेपाल में भी उसका वो टेम्पररी बरियल सिस्टम का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। उसका क्या है कि सबसे पहले वो डेड बॉडी जो हो, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है, उसका सैंपल DNA सैंपल लेना पड़ेगा। हम लोग सैंपल उन लोग का DNA सैंपल भी ले चुका है, और वो सैंपल का जो कंटेनर सैंपल का कंटेनर जिस कंटेनर का वो लॉक नंबर है, वो नंबर से उसका डेड बॉडी का भी नंबर दिया जाएगा। इसी तरह उन लोग का टेम्पोररी बॉरियल सिस्टम रख दिया जाएगा। अगर कोई आए कि हमारा वो तस्वीर से आइडेंटिफाई हो चुका है, ये मेरा आदमी है बोल के कोई रिलेटिव्स आएगा, तो रिलेटिव से आने के बाद में सबसे पहले उन लोग को हम उसमें क्या है उसको DNA मैचिंग के लिए भेज देंगे। अगर DNA मैच हो जाएगा तो उन लोग का वो टेम्पोररी बॉरियल सिस्टम से उन लोग का डेड बॉडी निकाल के उन लोग दे देंगे।

0: ये अभी फिर अभी अभी कुछ देर पहले अलर्ट आया था कि फिर वाटर लेवल जो है फिर से बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि आपका जिला भी अफेक्टेड हो
1: ना? जो होना था वो तो सबसे सब हो गया, हम लोग का सब खत्म कर दिया। अभी जो आने वाला है वो जो अभी समाचार मिली है वो उतना डेंजर नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
2: त्रिभुवन यूनिवर्सिटी मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल इन काठमांडू, 59 bodies have been brought, but only 8 have been identified. This is now becoming a huge concern because there is no clarity on how identifications will really take place. DNA tests are difficult, and even if DNA is collected, how do you actually link families? That's a huge concern. But think about the scope of this. There are already some reports that suggest that 2,300 people are missing in this country. Where are those bodies? How many will ever be found? How will DNA tests happen? Will families ever get to know what really happened to their loved ones?
3: पांच दिन हो गए हैं, ना कुछ पता है कहाँ है।
4: There are a lot of people who are walking up to hospitals to ensure that those missing in their families or relatives are getting registered by name here. I have someone. आपके कितने लोग missing हैं यहाँ पर? आप यहाँ जो नाम लिखवाए हैं missing?
5: मेरे को भी यकीन नहीं है कि इतने आदमी हैं, लेकिन बहुत हैं, बहुत हैं।
4: A lot of people have come at the hospitals here, and I'm at the Tribhuvan University Hospital and Training Center, where these people and the teaching hospital has been one of those centers where people are walking it continuously to get the names of those missing registered, or even contact them who have their names registered already. Sir, ye kaun hai?
6: Ye humka ikre 100 log ka aadmi hai, bibi hai.
4: So,
6: India se.
7: It's been 5 days. I'm waiting here for my father and mother. They are my world. I'm skipping my school days. मैं अपने स्कूल को लीव करके यहाँ आई हूँ अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। भगवान से यही कृपा है, सभी को रिक्वेस्ट है अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज़ फ़ोन कीजिए। मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ, मुझे पता है मेरे मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे ये लोग। आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ थे?
8: अपना ही भाई है उसका, तो आज
7: ये भी मिसिंग है? आपने आर्मी से बात की?
8: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे।
4: Hundreds of photographs that have been put up here of those who've been missing. Someone or the other has come here and put up photographs.
9: Till now it's 5th day, today is Sunday. And we have received 56 patients in our hospital, and out of those one patient we couldn't save him, other people are recovering. 3 patients are in the ICU, and we are still receiving patients. Yesterday evening we received one small kid after she was rescued after 70 hours of the incident, and she was mud drowned and had multiple injuries. So on top of that, the other thing is we have also received around 59 deceased bodies, and out of those 8 bodies we could identify and manage accordingly.
4: The transport industry in the entire country of Nepal has been huge, running to a tune of around 1 lakh vehicles, which includes tankers, special vehicles, and even a lot of small and big vehicles that are utilized for ferrying essentials across the country. But even that has taken a major hit, with thousands of trucks and tankers stuck almost everywhere. To talk more on this, I have with me Harpal Singh, who's been into the business. And give us an idea, sir, कितनी बड़ी ये त्रासदी है और आप लोगों के लिए भी कितना नुकसान हुआ है?
10: अभी तो फिलहाल तो देखिए ऐसे है कि नुकसान की बात तो अभी करके कोई मतलब नहीं आ रहा, नुकसान तो बहुत ही है। ट्रांसपोर्ट समझिए, हम लोग समझिए 1-2 साल बहुत पीछे हो गए जिस हिसाब से ये हुआ है। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले जो बेचारे जिनका ये फ्लड वगैरह जहाँ आया उनके लिए कुछ सोच के उसके बाद फिर गवर्नमेंट से हम अपने लिए बातचीत करेंगे। कि रबता हम लोगों को भी राहत मिले, जो EMI वगैरह जो देनी है बैंकों की, ये इधर वगैरह के लिए थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट मिले, ये मिले वो मिले करके, इसलिए हम लोग उसके पीछे बाद में करेंगे, पहले इन लोगों के लिए कुछ सोचें।
11: कितना बड़ा बिजनेस है ये ट्रांसपोर्ट का, अगर अमाउंट की बात करें, गाड़ियों की बात करें।

0: लोगों की बात करें,
1: अगर सब मिला के अगर करोगे तो ये तो अरबों का हिसाब, अरबों में चली जाती है ये जो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन है। तो लेकिन अब देखिए आप 5 दिन से रोड पूरी बंद की हुई है, हाईवे पूरा बंद है, तो इस गाड़ियाँ जिधर की हैं उधर ही खड़ी हैं लोड।
2: ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भारत।

0: कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।
1: Well, moving on to some breaking news now coming in from Mumbai. An 8-year-old boy was killed after being hit by a Innova car. This was in Bandra and the woman driver has now been arrested. The driver has been identified as one Meghna Rawal, a gym trainer by profession. The incident took place around 3:30, between 3:30 and 4 p.m. And according to the complaint, the accused was driving at high speed while talking on her mobile phone and she therefore endangered human life. The vehicle hit the child Ansh Gupta while he was crossing the road and then ran over him. He was rushed to hospital where the doctors declared him brought dead.
2: न्याय चाहिए और क्या चाहिए सर, मुझे मेरा बच्चे का न्याय चाहिए सर।
3: मेरा बच्चा कसूर नहीं
2: है सर, मेरा बच्चा साइड चल रहा था सर,
3: मेरा बच्चे
2: को उसने कैसे मार के उड़ा दिया।
4: मैं तो धंधा था सर, जानबूझ के गई, उसको इतना नहीं अक्कल था कि मेरे टायर के नीचे लड़का आ गया तो उसको उतर को देखना तो चाहिए, उठाना भी तो चाहिए, उसके पास इंसानियत नाम का चीज ही नहीं था।
3: उसके बाहर लाओ, जैसे मेरा लड़का गए साथ में उसको भी दोनों के साथ में लेके जाओ, तब मेरे को न्याय मिलेगा सर, दोनों के साथ में लेके जाओ।
4: मिलाओ
3: लाओ
5: हम लोग वहाँ पे मैच खेल रहे थे, ऐसे स्टैंड हो गया, हम लोग देख रहे थे मैडम फ़ोन से फ़ोन बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे, उनका ध्यान तो गया ही नहीं उधर। हम लोग जब रुका रहे तो फिर भी क्या बोलते एक दोनों टायर चढ़ चुके थे लेफ्ट साइड का, फिर भी हम लोग रुकाए, रुक नहीं रहे थे, आगे दो तीन बंदे रुके तो वो लोग रुकाए, उनके ही गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल में लेके आया, और फिर भी हम लोग आए, फिर भी तो तीन दो तीन एक डेढ़ घंटे तक हम लोग को फोटो ने पहचान को कोई अंदर जाने नहीं दिया। वो लोग ने चौकी फ़ोन किया तो चौकी वाले आए तो चौकी के पुलिस वाले ने फोटो दिया तो हम लोग भेजे वहाँ पे अपने एरिया में, तो मालूम चला कि हाँ अपने एरिया का है।
1: Let's go across to Abhishek Awasthi for more. And Abhishek, give us more details. And this woman, you know, left that child on the road after running him over.
6: Definitely, and but now she has been arrested, and more importantly, culpable homicide amounting to murder charge has been leveled on her. And she's been in the custody and further investigation is going on. Definitely, we can understand that the parents are demanding justice and this happening on a Bandra road and clear-cut, reckless driving. And also the eyewitness making a point out there that she was on the call when she was driving and an 8-year-old has lost his life. Definitely, further investigation by Mumbai police is going on and she's also been arrested. A strict action should be taken in this entire instance.
1: All right. Thanks so much, Abhishek, for joining us with those details. In other news now, Congress leader and Minister S. Rajesh Kumar from Tamil Nadu has now hit out over the TVK projecting Vijay as a prime ministerial candidate. TVK ministers are projecting Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the next prime minister. Our leader Rahul Gandhi, he says, is the Congress party's prime ministerial candidate for 2029. And then he goes on to say that if TVK does not agree to this, then Congress will not continue in the cabinet.
7: அமைச்சர்களெல்லாம் அவர்கள் பேசும்போது எங்களுடைய முதல்வர் அடுத்த பிரதமர்லாம் என்று சொல்கின்றார்கள். அதுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பத்திரிகை நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஊடகவியல் நண்பர்களாக இருக்கட்டும், அவர்கள் என்னிடம் ஒரு அமைச்சர் என்கின்ற முறையில் கேட்கும்போது நான் மிக தெளிவாக சொல்லியுள்ளேன், எங்களுடைய தலைவர் வருகின்ற 2029 நடைபெறுகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அடுத்த பிரதமராக வருவார்கள். ஒருவேளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதற்கு உடன்படாவிட்டால் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய இரண்டு அமைச்சர்களும் இந்த பதவியில் நீடிக்க மாட்டார்கள்.
1: Let's go across to Vijay Gopal for more on this. And Vijay, till now, you know, we've seen the Congress trying to play down this projection of the chief minister as the next prime ministerial candidate. But now this particular, you know, minister going forward saying that, you know, Congress will not be in the cabinet if it continues like this.
8: Again, it's a strong message from the Congress.

0: the dead body of one of the victims of the devastating Nepal floods being brought to a central point in Devighat, a small village on the banks of the Trishuli River. This is among the worst hit areas. Floodwaters rose three stories high. No one still knows how many were killed here, trapped in their homes, or how many were carried away by the rampaging river. This mother of three children escaped with her life. Her children also made it. She's back with her husband to recover whatever she can from what was her home.
1: अब कहाँ जाएंगे?
2: अब कहाँ जानुहुन्छ
3: तपाईं? हामी अब जान त कहाँ जाने अब काई केही छैन।
4: जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ घर नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है।
1: तो अब कहाँ रह रहे हैं? आप यहीं रह रहे हैं या और कहीं जाके रह रहे हैं रात को?
3: अब अहिले चाहिँ त्यहाँ माथि हस्पिटलमा छौं, आयुर्वेदिक।
4: आयुर्वेदिक हस्पिटल में बैठ रहे हैं अभी, यहाँ से निकल के।
1: और बाद में क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है अभी तक?
4: अब कि आइडिया सरकार क्या बोलेंगे, सरकार कुछ ये पीड़ित लोग को कुछ राहत मिलेगा और घर बना के कहीं रख देंगे, वो तो मालूम नहीं है।
0: Suddenly there's panic

0: now been arrested. The driver has been identified as one Meghna Rawal, a gym trainer by profession. The incident took place around 3:30, between 3:30 and 4 p.m. And according to the complaint, the accused was driving at high speed while talking on her mobile phone, and she therefore endangered human life. The vehicle hit the child, Ansh Gupta, while he was crossing the road and then ran over him. He was rushed to hospital where the doctors declared him brought dead.
1: न्याय चाहिए और क्या चाहिए सर मुझे मेरा बच्चे का न्याय चाहिए सर
2: मेरा
1: बच्चा कसूर रोड पर नहीं है सर मेरा बच्चा साइड चल रहा था सर मेरा बच्चे को उसने कैसे मार के उड़ा दिया
3: मैं तो नंदन था सर जानबूझ के गई उसको इतना नहीं अक्कल था कि मेरे टायर के नीचे लड़का आ गए तो उसको उतर को देखना तो चाहिए उठाना भी तो चाहिए उसके पास इंसानियत नाम का चीज ही नहीं था
2: उसके बाहर लाओ जैसे मेरा लड़का गए साथ में उसको भी दोनों के साथ में लेके जाओ तब मेरे को इनाम मिलेगा सर दोनों के साथ में लेके जाओ
3: लाओ
2: उसका चेहरा
3: मिलाओ
2: लाओ
4: हम लोग वहाँ पे मैच खेल रहे थे ऐसे स्टैंड हो गया हम लोग देख रहे थे मैडम फ़ोन से फ़ोन बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे उनका ध्यान तो गया ही नहीं उधर हम लोग जब रुका रहे तो फिर भी क्या बोलते एक दोनों टायर चढ़ चुके थे लेफ्ट साइड का फिर भी हम लोग रुकाए रुक नहीं रहे थे आगे दो तीन बंदे रुके तो हम लोग रुकाए उनके ही गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल में लेके आया और फिर भी हम लोग आए फिर भी तो दो तीन एक डेढ़ घंटे तक हम लोग को फोटो ना पहचान को कोई अंदर जाने नहीं दिया वो लोग ने चौकी फ़ोन किया तो चौकी वाले आए तो चौकी के पुलिस वाले ने फोटो दिया तो हम लोग भेजे वहाँ पे अपने एरिया में तो मालूम चला कि हाँ अपने एरिया का है
0: Let's go across to Abhishek Awasthi for more. And Abhishek, give us more details. And this woman, you know, left that child on the road after running him over?
5: Definitely. And but now she has been arrested. And more importantly, culpable homicide amounting to murder charge has been leveled on her. And she's been in the custody and further investigation is going on. Definitely, we can understand that the parents are demanding justice and this happening on a Bandra road and clear-cut reckless driving. And also the eyewitness making a point out there that she was on the call when she was driving and an 8-year-old has lost his life. Definitely, further investigation by Mumbai police is going on and she's also been arrested. A strict action should be taken in this entire incident. Bye.
0: All right. Thanks so much, Abhishek, for joining us with those details. In other news now, Congress leader and Minister S. Rajesh Kumar from Tamil Nadu has now hit out over the TVK projecting Vijay as a prime ministerial candidate. TVK ministers are projecting Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the next prime minister. Our leader Rahul Gandhi, he says, is the Congress party's prime ministerial candidate for 2029. And then he goes on to say that if TVK does not agree to this, then Congress will not continue in the cabinet.
6: அமைச்சர்கள் எல்லாம் அவர்கள் பேசும்போது எங்களுடைய முதல்வர் அடுத்த பிரதமர் எல்லாம் என்று சொல்கின்றார்கள் அதுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பத்திரிகை நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஊடகவியல் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் என்னிடம் ஒரு அமைச்சர் என்கின்ற முறையில் கேட்கும்போது நான் மிக தெளிவாக சொல்லியுள்ளேன் எங்களுடைய தலைவர் வருகின்ற 2029 நடைபெறுகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அடுத்த பிரதமராக வருவார்கள் ஒருவேளை தமிழக வெற்றி கழகம் அதற்கு உடன்படாவிட்டால் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய இரண்டு அமைச்சர்களும் இந்த பதவியில் நீடிக்க மாட்டார்கள்
0: Well, let's go across to Vijay Gopal for more on this. And Vijay, till now, you know, we've seen the Congress trying to play down this projection of the chief minister as the next prime ministerial candidate. But now this particular, you know, minister going forward saying that, you know, Congress will not be in the cabinet if it continues like this.
7: Again, it's a strong message from the Congress party towards TVK because, you know, for past few days, several TVK ministers from senior leader Sengotian and many other senior leaders were projecting TVK chief and chief minister C. Joseph Vijay as next prime minister and even ahead of 2029 parliament election. But Congress have not reacted so far against the statement. But on a lighter note only, they have been reacting in past few days. But now, after recent repeatedly, many leaders were

0: For him, he was rushed to hospital where the doctors declared him brought dead.
1: अन्याय चाहिए और क्या चाहिए सर मुझे मेरा बच्चे का अन्याय चाहिए सर
2: मेरा
1: बच्चा कसूर नहीं है सर मेरा बच्चा साइड चल रहा था सर
2: मेरा बच्चे
1: को उसने कैसे मार के उड़ा दिया
3: मैं तो नंदन था सर जानबूझ के गई उसको इतना नहीं अक्कल था कि मेरे टायर के नीचे लड़का आ गया तो उसको उतर को देखना तो चाहिए उठाना भी तो चाहिए उसके पास इंसानियत नाम का चीज ही नहीं था
2: उसके बाहर लाओ जैसे मेरा लड़का गया साथ में उसको भी दोनों के साथ में लेके जाओ तब मेरे को इंसान मिलेगा
3: सर
2: दोनों के साथ में लेके जाओ
3: लाओ
2: उसका चेहरा
3: मिलाओ
2: लाओ
4: हम लोग वहाँ पे मैच खेल रहे थे ऐसे स्टैंड हो गया हम लोग देख रहे थे मैडम फ़ोन से फ़ोन बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे उनका ध्यान तो गया ही नहीं उधर हम लोग जब रुका रहे तो फिर भी क्या बोलते एक दोनों टायर चढ़ चुके थे लेफ्ट साइड का फिर भी हम लोग रुकाए रुक नहीं रहे थे आगे दो तीन बंदे रुके तो हम लोग रुकाए उनके ही गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल में लेके आया और फिर भी हम लोग आए फिर भी तो दो तीन एक डेढ़ घंटे तक हम लोग को फोटो ना पहचान को कोई अंदर जाने नहीं दिया वो लोग ने चौकी फ़ोन किया तो चौकी वाले आए तो चौकी के पुलिस वाले ने फोटो दिया तो हम लोग भेजे वहाँ पे अपने एरिया में तो मालूम चला कि हाँ अपने एरिया का है
0: Let's go across to Abhishek Awasthi for more. And Abhishek, give us more details. And this woman, you know, left that child on the road after running him over.
5: Definitely, and but now she has been arrested, and more importantly, culpable homicide amounting to murder charge has been leveled on her. And she's been in the custody and further investigation is going on. Definitely, we can understand that the parents are demanding justice and this happening on a Bandra road and clear-cut reckless driving. And also the eyewitness making a point out there that she was on the call when she was driving and an 8-year-old has lost his life. Definitely, further investigation by Mumbai police is going on and she's also been arrested. A strict action should be taken in this entire incident.
0: All right. Thanks so much, Abhishek, for joining us with those details. In other news now, Congress leader and Minister S. Rajesh Kumar from Tamil Nadu has now hit out over the TVK projecting Vijay as a prime ministerial candidate. TVK ministers are projecting Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the next prime minister. Our leader Rahul Gandhi, he says, is the Congress party's prime ministerial candidate for 2029. And then he goes on to say that if TVK does not agree to this, then Congress will not continue in the cabinet.
6: அமைச்சர்கள் எல்லாம் அவர்கள் பேசும்போது எங்களுடைய முதல்வர் அடுத்த பிரதமர் எல்லாம் என்று சொல்கின்றார்கள் அதுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பத்திரிகை நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஊடகவியல் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் என்னிடம் ஒரு அமைச்சர் என்கின்ற முறையில் கேட்கும்போது நான் மிக தெளிவாக சொல்லியுள்ளேன் எங்களுடைய தலைவர் வருகின்ற 2029 நடைபெறுகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அடுத்த பிரதமராக வருவார்கள் ஒருவேளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதற்கு உடன்படாவிட்டால் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய இரண்டு அமைச்சர்களும் இந்த பதவியில் நீடிக்க மாட்டார்கள்
0: Well, let's go across to Vijay Gopal for more on this. And Vijay, till now, you know, we've seen the Congress trying to play down this projection of the chief minister as the next prime ministerial candidate. But now this particular, you know, minister going forward saying that, you know, Congress will not be in the cabinet if it continues like this.
7: Again, it's a strong message from the Congress party towards TVK because, you know, for past few days, several TVK ministers from senior leader Sengotian and many other senior leaders were projecting TVK chief and chief minister C. Joseph Vijay as next prime minister and even ahead of 2029 parliament election. But Congress have not reacted so far against the statement. But on a lighter note only, they have been reacting in past few days. But now, after recent repetitively many leaders were saying this, now Congress has come down heavily against TVK, saying that they are threatening, saying that if TVK continues to project Vijay as the next prime minister candidate for 2029 parliament election, Congress won't hesitate to, two ministers won't hesitate to step down from their position. So it's a strong message from the Congress party. Remember, TVK able to form the government.

0: The dead body of one of the victims of the devastating Nepal floods being brought to a central point in Devighat, a small village on the banks of the Trishuli River. This is among the worst hit areas. Floodwaters rose three stories high. No one still knows how many were killed here, trapped in their homes, or how many were carried away by the rampaging river. This mother of three children escaped with her life. Her children also made it. She's back with her husband to recover whatever she can from what was her home.
1: अब कहाँ जाएंगे?
2: अब कहाँ जानुहुन्छ
3: तपाईले? हामी अब जान त कहाँ जाने अब काई केही छैन।
4: जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ घर नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है।
1: तो अब कहाँ रह रहे हैं? आप यहीं रह रहे हैं या और कहीं जाके रह रहे हैं रात को?
3: अब अहिले चाहिँ त्यहाँ माथि अस्पतालमा छौ। आयुर्वेदिक
4: आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बैठ रहे अभी यहाँ से निकल के।
1: और बाद में क्या होगा कोई आइडिया नहीं अभी तक?
4: अब कि आइडिया सरकार क्या बोलेंगे, सरकार कुछ ये पीड़ित लोग को कुछ राहत मिलेगा और घर बना के कहीं रख देंगे वो तो मालूम नहीं।
0: Suddenly there's panic everywhere. Women and children start running. Others get into their bikes and flee. The river, they shout out, is about to break its banks. We move to try and get an idea of what's happening.
1: क्या हुआ? पानी का स्तर बढ़ गया है? पानी बढ़ा है? पानी का स्तर बढ़ गया है?
5: पानी का स्तर बहुत
6: ऊपर आ गया है।
5: क्या हुआ? आपने क्या देखा? हमने तो देखा
6: नहीं, हम देखा है इधर। हमारे इधर इधर का आदमी है, इधर का स्थानीय है, इसलिए हमको खोड़ा खोड़ा का बहुत चौड़ा है ना, पानी का सतह बहुत चौड़ा हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, इसलिए सब आदमी को हम बुलाया, चिचाया, कराया, चिल्लाया, लेकिन जल्दी जल्दी चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, इधर मरने का मुंह है, फिर मरेगा फिर।
0: Yes, the river is rising. It's higher than what I have seen.
7: It's going up, yeah? Hurry up.

0: The dead body of one of the victims of the devastating Nepal floods being brought to a central point in Devighat, a small village on the banks of the Trishuli River. This is among the worst hit areas. Flood waters rose 3 stories high. No one still knows how many were killed here, trapped in their homes, or how many were carried away by the rampaging river. This mother of 3 children escaped with her life. Her children also made it. She's back with her husband to recover whatever she can from what was her home.
1: अब कहाँ जाएंगे?
2: अब कहाँ जानुहुन्छ
3: तपाई? हामी अब जान त कहाँ जाने अब काई केही छैन।
4: जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ घर नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है।
1: तो अब कहाँ रह रहे हैं? आप यहीं रह रहे हैं या और कहीं जाके रह रहे रात को?
3: अब अहिले चाहिँ त्यहाँ माथि अस्पतालमा छौ, आयुर्वेदिक।
4: आयुर्वेदिक अस्पताल में बैठ रहे अभी, यहाँ से निकल के।
1: और बाद में क्या होगा, कोई आइडिया नहीं अभी तक?
4: अब कि आइडिया सरकार क्या बोलेंगे, सरकार कुछ ये पीड़ित लोग को कुछ राहत मिलेगा और घर बना के कहीं रख देंगे, वो तो मालूम नहीं है।
0: Suddenly there's panic everywhere. Women and children start running. Others get into their bikes and flee. The river, they shout out, is about to break its banks. We move to try and get an idea of what's happening.
1: क्या हुआ? पानी का स्तर बढ़ गया है? पानी बढ़ा है? पानी का स्तर बढ़ गया है?
5: हाँ, पानी का स्तर बहुत ऊपर आ गया है।
6: क्या हुआ? आपने क्या देखा? हमने तो देखा।
7: नहीं, हम देखा है। इधर हाँ, हमारे इधर का आदमी है, इधर का स्थानीय है, इसलिए हम खोड़ा का बहुत चौड़ा है ना, पानी का सतह बहुत चौड़ा हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, इसलिए सब आदमी को हम बुलाया, चिचाया, कराया, चिल्लाया, लेकिन जल्दी जल्दी चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, इधर मरने का मुंह है, फिर मरेगा फिर।
0: Yes, the river is rising. It's higher than what I have seen.
1: It's going up, yeah? Hurry up. All right, we are at Devighat right now. This is the Trishuli. And the levels of the water over here in the last 15 to 20 minutes have really started going up. It's about 2 o'clock local time, at about 1:40 or so, the levels started really going up. We managed to get here and we're leaving this area right now. The level of this Trishuli, which is what we've been sort of monitoring ourselves because we've been deployed in this area for the last couple of days, is higher now than before. We're going to get out of this area. We're going to take you through

0: The dead body of one of the victims of the devastating Nepal floods being brought to a central point in Devighat, a small village on the banks of the Trishuli River. This is among the worst hit areas. Flood waters rose 3 stories high. No one still knows how many were killed here, trapped in their homes, or how many were carried away by the rampaging river. This mother of 3 children escaped with her life. Her children also made it. She's back with her husband to recover whatever she can from what was her home.
1: अब कहाँ जाएंगे?
2: अब कहाँ जानुहुन्छ तपाई?
3: हामी अब जान त कहाँ जाने अब काई केही छैन।
4: जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ घर नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है।
1: तो अब कहाँ रह रहे हैं? आप यहीं रह रहे हैं या और कहीं जाके रह रहे रात को?
3: अब अहिले चाहिँ त्यहाँ माथि हस्पिटलमा छौ। आयुर्वेदिक
4: हस्पिटलमै बैठ रहे अभी यहाँ से निकल के।
1: और बाद में क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है अभी तक? अब
4: कि आइडिया सरकार क्या बोलेंगे, सरकार कुछ ये पीड़ित लोग को कुछ राहत मिलेगा और घर बना के कहीं रख देंगे, वो तो मालूम नहीं है।
0: Suddenly there's panic everywhere. Women and children start running. Others get into their bikes and flee. The river, they shout out, is about to break its banks. We move to try and get an idea of what's happening.
1: क्या हुआ? पानी का स्तर बढ़ गया है? पानी बढ़ा है? पानी का स्तर बढ़ गया है?
5: हाँ, पानी का स्तर बहुत ऊपर आ गया है।
1: क्या हुआ? आपने क्या देखा? हमने तो
5: देखा। नहीं, हम देखा है। इधर हम, हाँ, हमारे इधर का आदमी है, इधर का स्थानीय है, इसलिए हम वो खोड़ा का बहुत चौड़ा है ना, पानी का सतह बहुत चौड़ा हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए सब आदमी को हम बुलाया, चिचाया, कराया, चिल्लाया, लेकिन जल्दी चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, इधर मरने का मुंह है, फिर मरेगा फिर।
0: Yes, the river is rising. It's higher than what I have seen.
1: It's going up, yeah? Hurry up. All right, we are at Devighat right now. This is the Trishuli, and the levels of the water over here in the last 15 to 20 minutes have really started going up. It's about 2 o'clock local time. At about 1:40 or so, the level started really going up. We managed to get here and we're leaving this area right now. The level of this Trishuli, which is what we've been sort of monitoring ourselves because we've been deployed in this area for the last